0: This is Talk 100.3.
1: दूर होते होते वो आवाज डूब गई, सुनने के लिए सिर्फ यादें रह गईं। चंदन चला गया और इतनी दूर चला गया कि आरती के लिए वो फासले तय करना नामुमकिन हो गया। मुड़ के जब भी देखा चंदन का चेहरा नजर नहीं आया। गूंजते हुए माजी से सिर्फ इतना ही सुनाई दिया, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है।

0: ESB, the essential talk, sport and business across the UAE. The action as it happens with Neil Osha.
1: Hello and welcome to ESB, talk, sport and business. I'm Neil Osha on Talk 100.3. And as we're sitting on the hump day, yani ke aaj ka jo din hai na Wednesday, दो दिन वीक के हो गए हैं, दो दिन वीक के आने बाकी है, तो हम डे कहते हैं उसको, यानी कि ये पार कर लिया तो बस वीकेंड सामने दिख जाता है। कैसा चल रहा है आपका हफ्ता? विल टॉक अबाउट दैट, विल ऑल्सो स्पीक अबाउट अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स दैट आर हैपनिंग अराउंड अस, प्लस एन ऑलमोस्ट रिकॉर्ड ब्रेकिंग और रिकॉर्ड मेकिंग फीट दैट वाज डन बाय द यूएई'स वुमेन्स क्रिकेट टीम। टॉक इन डिटेल राइट हियर ऑन टीएसबी।
0: टीएसबी, टॉक स्पोर्ट एंड बिजनेस, टॉक 100.3।
1: सो यार, काफ़ी सारी चीज़ें हो रही है हमारे आसपास, अच्छी चीज़ें, कुछ थोड़ी सी ऐसे लग रहा है कि भाई ये क्या हो रहा है, ऐसी चीज़ें भी हो रही हैं। AI इज़ ग्रोइंग सो रैपिडली हर जगह पे, यानी कि इंसान को अगर एक मैसेज भी लिखना हो ना आज की तारीख में, तो वो फटाक से चैट GPT को बोलते हैं कि भाई मुझे ये मैसेज आया है किसी का, इस पर रिप्लाई मैं क्या करूं? तो चैट GPT भी अब जो है वो ज़्यादा आपका इतना पर्सनलाइज हो चुका है कि आपके लिए रिप्लाई सोचता भी है और आपके टोन में लिख के देता है कि दिस विल सूट योर टोन। वैसे तो फिर वही आप कॉपी पेस्ट करके भेज देते हो, ठीक है ना। और फिर दूसरा एक होता है कॉरपोरेट यूजेज ऑफ AI, जहां पर आप इतना सारा ईमेल्स पे देखो तो हैवी रिलायंस हो गया है ऑफ यू नो ऑल ऑफ दीज AI मॉडल्स, दैट यू फील लाइक व्हाई आर यू राइटिंग सच अ लॉन्ग ईमेल जस्ट टू राइट दैट वन लाइन दैट वुड सफाइस। कि आप एक लाइन में बोल दो ना कि भाई सुनो, ये तुम्हारा काम है, तुम्हें करना है, या कल रात को या आज शाम को 5 बजे के पहले ये करके रिपोर्ट भेज देना। पर नहीं, ऐसा 3 पेज का एक लंबा चौड़ा ईमेल आएगा और ऐसे ऐसे वर्ड्स होंगे जो आपको पता होगा कि भाई ये तो इंसान की वोकैबुलरी में ही नहीं है, ये यानी कि आम इंसान की वोकैबुलरी में नहीं है, ये तो यानी कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी खोल के बैठूंगा 18वें पेज पे 34वां शब्द जो है, अच्छा ये वाला वर्ड डालूंगा मैं, तब जाके कभी आपका ऐसा ईमेल बनेगा, है ना। तो अगर आपको ऐसे ईमेल दिख जाए तो आप समझ लीजिएगा कि AI का कमाल है। बट ठीक है, AI इज़ गुड, राइट? आई मीन बाहर ही हम बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि यू नो ऐसा थोड़ा सा किसी एक्सपर्ट को लेके आएंगे कभी, ताकि बात करें AI के ऊपर। लेकिन कॉमन मैनस यूजेज, आपका मेरा यूजेज जो है AI का काफ़ी ज़्यादा हो गया। इनफैक्ट कुछ दिनों पहले की बात है, आई वाज टॉकिंग टू माय डैड एंड यू नो माय डैड वाज लाइक, अरे यू नो आई सॉ दिस वीडियो ऑन यूट्यूब, दिस गाय वाज सेइंग दिस ऑन यूट्यूब, दैट गाय वाज सेइंग दैट ऑन यूट्यूब, यू शुड नॉट लिसन टू दिस, यू शुड वॉच दिस। एंड आई वाज लाइक, डैड लिसन, मोस्ट ऑफ दीज गाइज ऑन यूट्यूब आर लाइंग, आई एम सॉरी बट या दे आर लाइंग। डैड वाज लाइक, नो नो, हाउ कैन दे बी लाइंग, इट्स ऑन यूट्यूब। आई सेड, या इट्स ऑन यूट्यूब एंड यूट्यूब इज नॉट अ कंट्रोल्ड मीडिया, इट्स बेसिकली आई विल पुट अप अ कैमरा इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई विल से व्हाटएवर आई वांट टू से। मैं कहूँगा भाई आप राइस खाने से कभी मोटे नहीं होंगे, आपको जितना राइस खाना है, आपको जितना यू नो बिस्किट्स खाने हैं, पिज्ज़ा खाना है, बर्गर खाना है, आप कभी उससे मोटे नहीं होंगे। जितना भी खाना खाओ, आप दिन में 20 पिज्ज़े खाओ और पूरी ज़िंदगी भर खाओ, आप कभी मोटे नहीं होंगे, ये है मेरा शर्तिया इलाज। कौन रोकेगा मुझे ये बोलने से? हु विल स्टॉप मी? नो वन। It'll go and you will think, oh my God, yeah, that's, a, you know, because someone has said it on YouTube and because it's published, I think it's a fact. So you need to verify all these facts. And that's why what you should do is that instead of looking for YouTube, you know, for your answers, because he's still a very curious man, you know. So I told him that, listen, how about, you know, when I come and meet you, I'll teach you something. And when I met him, I taught him the ways around using ChatGPT for his curiosity, so that now he speaks to ChatGPT, is getting answers. He's a food technologist, or rather professionally was a food technologist, now he's retired. So he's very curious about, you know, about everything. So research karte hain, dhoondte hain cheezein, you know, khane ki cheezon mein, fats ke bare mein, ye wo. To wo research jo kar rahe the, ठीक है, तो उन्होंने जाके देखा और फिर काफ़ी सारी चीज़ें उन्हें पता चली। देन ही वुड कॉल मी एंड टेल मी, ओ लिसन, आई वाज चेकिंग दिस ऑन चैट GPT, नाउ दिस, एंड यू आर राइट, यू नो चैट GPT हैज मोर बेटर आंसर्स एज कम्पेयर टू दोज रैंडम पीपल सेइंग रैंडम थिंग्स ऑन यूट्यूब। सो नाउ यूट्यूबर्स हैव बिकम रैंडम पीपल फॉर हिम। आई डोंट नो इफ ही वॉचेस माई यूट्यूब वीडियोज, बट फॉर हिम नाउ यूट्यूबर्स आर रैंडम एंड आई एम ग्लैड, बिकॉज 97% ऑफ यूट्यूबर्स आर रैंडम। आई एम नॉट किडिंग, आई एम सीरियसली टेलिंग यू, 97%, बिकॉज यार YouTube पे क्या चलता है? शौक चलता है, सेंसेशनलाइजेशन चलता है, और जब तक आप ये नहीं करोगे तब तक आपका वीडियो नहीं चलता है। ठीक है ना. सो व्हाट हैपेंस इज बेसिकली व्हेन यू वांट टू सेंसेशनलाइज एनीथिंग यू विल लाई थ्रू योर नोज ना. आप कहाँ सच बोलोगे, सच बोलने पे थोड़ी काम होता है. मैं जब मेरे प्रीव्यूज कर रहा था फॉर IPL, मैं कोई ड्रामा नहीं, कोई टंटा नहीं, मैं सीधा सीधा बताता था कि अच्छा सुनो ये मैच में ये है ऐसा, ये प्लेयर्स है, ये प्लेयर की वजह से ये हो सकता है, ये पिच की वजह से ऐसा हो सकता है, दिस कुड बी पोटेंशियली हैपनिंग. बट कुछ लोग हैं जो ड्रामा करते हैं, आई एम टेलिंग यू ऐसा होगा, मेरी बात है ये ऐसा होगा. वो ड्रामा जब तक नहीं करोगे तब तक नहीं चलता. बट बॉस हम ड्रामा नहीं करते, हम फैक्ट्स बताते हैं ना. सो दैट इज़ व्हाट इट इज़. बट चैट GPT या जो भी है AI जो भी है, वो बेसिकली आपको डेफिनेटली एक सपोर्ट करता है, एक हेल्प करता है टू बेटर योर लैंग्वेज स्किल्स. हम भाई देसी लोग हैं, अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़े, तो क्या हुआ हमारी अंग्रेजी थोड़ी यू नो ऑक्सफर्ड डिक्शनरी जैसी है. तो अब वो तो खैर अभी ये तो उन अंग्रेज़ों की भी नहीं है, उनकी भी अंग्रेजी देखो तो वो एक्सेंट में दो चीज़ बोल देंगे आपको लगता है अरे भाई इनको अंग्रेजी आती है. उनसे अच्छा ग्रामर हमारा होता है, बाय द वे आई एम नॉट किडिंग. ठीक है ना, काफ़ी सारे यू नो इनसे बात कर लो, कभी आपको समझ में आ जाएगा कि आपका ग्रामर, आपका प्रोनंसिएशन उनसे बेहतर होता है. और नकाश ने भेजा है AI एंड LinkedIn, ये बहुत बढ़िया भेजा है, मस्त एक मीम चल रहा था, वो भाई ने उठा के टाइमिंग से भेजा है, गब्बर सिंह वाला. गब्बर सिंह डकैत हेड हंटर एंड कल्चरल एनफोर्सर, ये रामगढ़ गांव का, ये उनका LinkedIn प्रोफाइल है गब्बर सिंह का शोले का. पर जब उन्होंने डाल दिया भाई ChatGPT पे, उसके बाद में AI की मदद से क्या हो गया गब्बर सिंह, 50,000 प्लस कैप्टिव फॉलोअर्स, चीफ टैलेंट एक्विजिशन स्पेशलिस्ट, चंबल्स 40 under 40 मोस्ट वॉन्टेड, ऑल्टरनेटिव मोटिवेशन टेक्निक प्रैक्टिशनर, कंपेलिंग नेगोसिएशन लीडर, एडवोकेट ऑफ 70 hour वर्क और एल्स इनिशिएटिव, टॉप आउटलॉ वॉइस ठाकुर सोसाइटी ग्रुप, चंबल स्कूल ऑफ बिजनेस, रामगढ़ इंडिया. ये तो भाई एकदम बढ़िया ले है, एब्सोल्युटली ऐसा ही होता है. आप देख लो लोगों के आजकल LinkedIn, ऐसे लगते हैं कि भाई पता नहीं किसने लिख के भेजा है. उसके पहले LinkedIn पे लिखते थे सेल्स मैनेजर एट सो एंड सो, अभी देखो तो रेवेन्यू एक्सेलरेटर, चीफ रेवेन्यू सपोर्टर, यू नो 5-star रेवेन्यू, ये सब हो चुका है ऐसा. बट आई कैन टेल यू वन थिंग, AI को अच्छे से यूज़ करोगे तो अच्छी चीज़ें होती हैं. आप कितना AI यूज़ करते हो अपनी लाइफ में, कौन सी चीज़ों के लिए AI को यूज़ करते हो? लेट्स हैव अ कॉन्वर्सेशन ऑन दैट ऑन 0586861003. दैट्स माई व्हाट्सएप नंबर, 0586861003. क्या आप भी AI से कुछ इंस्पायर हो के आपने कुछ वीडियो बना लिए, या आपने यू नो ईमेल लिखना चालू कर दिया, या मैसेजेस के लिए यूज़ करते हो, या यू नो पिक्चर्स के लिए यूज़ करते हो, या बस ऐसी यू नो अच्छे कंटेंट के लिए यूज़ करते हो, या कुछ क्यूरियोसिटी है जैसे मेरे डैड को है, तो अपनी क्यूरियोसिटी को सैटिएट करने के लिए जो है आप सेशिएट करने के लिए आप AI को यूज़ करते हो, 0586861003. बिकॉज you know there will always be conversations about AI taking over you know our jobs and whatever, but no, if you ride the wave right, then there's never a problem. It's like, remember jab computers aaye the, sabko aisa laga tha ki oh jab computers aayenge to sabki naukriyan chali jayengi, wo jo haath se ledger banate hain, kitabon mein jo likhte hain, wo kya karenge kya nahi karenge. Nahi, sabne computer seekh liye, सबने कंप्यूटर सीख लिए, सबको यूज़ करना आ गया, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट तो बेसिक चीज़ें हो गई, ये स्कूल में सिखाने लग गए, और उसकी वजह से क्या हुआ, नो वन लॉस देयर जॉब, एवरीवन लर्नड हाउ टू यूज इट. एंड दिस इज सेम थिंग विद AI इज़ नॉट अबाउट कोडिंग, इट इज़ अबाउट हैविंग कॉन्वर्जेशन विद अ मशीन दैट अंडरस्टैंड्स व्हाट यू आर सेइंग एंड गिव्स यू व्हाट यू वांट, राइट. ऑब्वियसली देर आर डीपर साइड्स टू इट, आप उसमें ऐप भी क्रिएट कर सकते हो बिना कोडिंग के, ये सारी चीज़ें. बट अगर आपको ज़रूरत नहीं तो फिर ठीक है, बट आपको जो ज़रूरत है आपके काम में, जिस चीज़ की ज़रूरत है, उस चीज़ के लिए क्या आप AI यूज़ करते हो? एंड अगर करते हो तो बताओ ऑन 0586861003. मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यू कैन ऑलवेज व्हाट्सएप मी. एंड आई एम श्योर कि नकाश जो हमारे बहुत रेगुलर सुनने वाले हैं और बड़े मीमर है, बहुत बड़े मीमर है, इज़ अ वेरी वेरी यू नो अमेजिंग मीमर, वो भाई मुझे लगता है कि AI से दो कदम आगे ही हैं. ये AI के मीम बनाते हैं, AI लोग जो हैं AI को यूज़ करके मीम बनाते हैं, नकाश जो है वो AI के ऊपर मीम बनाते हैं, वो अलग लेवल पे हैं. आई एम श्योर ये भी यूज़ करते होंगे, बट इट्स अ गुड थिंग. एंड आई इन नो वे आई से दैट यूजिंग AI इज़ बैड. आई एम समवन हु विल ऑलवेज से दैट यू नो इफ यू यूज़ AI इन द राइट वे, will always help you, will always give you a good direction, a good way in where you can actually move forward, learn things faster, be more productive. Yaar, agar ek cheez karne ko aapko agar ek ghanta lagta hai, wahi agar aap AI ki madad se karoge to shayad 20 minute mein ho jayegi. Agar aap उसे यू नो टाइम लाइन्स अगर आप देखते हो तो आई एम श्योर दैट इट विल बिकम अ लॉट फास्टर. 0586861003 देयर इज अ मैसेज दैट्स कम इन फ्रॉम निशांत एंड निशांत सेज दैट आई यूज एआई इन माय डेली वर्क. Interesting. What is your daily work? I want to know, Nishant, so that I can understand that, you know, how are you using it? And there's nothing wrong in using AI. It's in fact good that you're using AI. There's another message that's come in from Deepak. Deepak kehte hain, main seekh raha hoon AI use karna. Good. Very nice. I mean, it's always good to learn, you know, newer things. And it is an ever-evolving industry, mere bhai. Jis tarah se AI ke components jitne bhi hain, chahe semiconductor chips ho, chahe data storage ho, chahe, you know, technology space ho, cloud space ho, un sab mein, un sab ke stocks badh rahe hain. Kyun badh rahe hain? Because of the excessive use of AI. कल हम संदीप से बात कर रहे थे, जादवानी, संदीप जादवानी जो हमारे फाइनेंस एक्सपर्ट हैं, उन्होंने भी यही कहा ना कि व्हाई आर ऑल ऑफ दीज यू नो एआई डोमेन स्टॉक्स इंक्रीजिंग, इनके स्टॉक्स के प्राइसेस इंक्रीज क्यों हो रहे हैं, कि नॉट जस्ट बिकॉज के यू नो बढ़ रहा है काम, बट बिकॉज लोग भी तो यूज़ कर रहे हैं ना. सेमीकंडक्टर चिप्स जो हैं, जो हमेशा एआई के जो प्रोसेसर्स हैं उसमें यूज़ होते हैं, तो उनका जो रेट्स आप देखो सेमीकंडक्टर्स की जितनी भी कंपनीज़ हैं उनके ETFs हैं, उनके रेट्स बढ़ रहे हैं, उनके स्टॉक के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है ना. जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं उनके, जो क्लाउड स्टोरेज हैं जहाँ पर, क्योंकि देखो आप अगर चैट GPT से बात करते हो, आफ्टर सम टाइम चैट GPT अंडरस्टैंड्स यू, राइट? इट टॉक्स टू यू बिकॉज इट नोज यू. व्हाई? Because it's storing all that conversation that you're having with it, right? In some place, unki memory mein stored hota hai. Ab ye storage kahan hai? Uska bhi to bhai location bada karna padega. Unko apne jo kya kehte hain servers hain, servers ko bada karta rehna padega. Wo servers ko bada karoge to matlab yani ki servers ke liye jo requirement un sab ki zarurat padegi. Jitni zyada zarurat padegi utne zyada unke stocks ke prices upar jayenge. Simple as that, right? So if you're using AI, which I think you should, let me know on what platforms do you use, kis cheez ke liye kya use karte ho. 0586861003, that is my number. There's a message that's come in from Swati. Swati says that I am not an active user of AI, but I do learn newer concepts from it. Very nice. There you go, the creative side of it, the curious side of it, के कुछ नहीं आता है तो फिर पूछो उसको, वो आपको बताएगा, simplify करके बताएगा. You know, there are so many prompts that you can use to actually simplify things for yourself if you want to learn something new. And that definitely helps. But one thing I will always tell you, जो मैं पहले भी कहता था Google के बारे में, वही चीज़ मैं कहूँगा AI के बारे में. अपने medical conditions या medical health advice के लिए कभी भी AI को या Google को ना पूछें. They will have detailed answers, but no, I think you should go to a medical practitioner to get it checked. Fred ka ek message aaya. Fred ne mujhe lamba choda voice note bheja hai. Fred, I will have to listen to it only after I, you know, finish talking, because otherwise I won't be able to hear you. So once I finish my conversation, I can definitely listen to your voice note. Otherwise, if you can type, that'll be really great. So I can read it while I am actually talking. You know, I can do a bit of multitasking, and that is primarily about, you know, reading about whatever you're writing, but I can't listen to your voice note while I'm talking. Kyunki wo thoda challenging ho jayega na, voice note sunte sunte baat karna. There's a message that's coming from Nakash. He says, I use it for making presentations, take ideas for modern and traditional sales, history references, and most importantly, meme templates. There you go. Very good. See, presentations. It's a very good tool if you are in, you know, making presentations. Bahut aasan ho jata hai presentation banana. फटाफट से प्रेजेंटेशन जाती है, आपको टाइम ही नहीं लगता. पहले यू नो मुझे याद है, हम जब कॉलेज में हुआ करते थे, व्हेन आई स्टडी मास कॉम, तो वी हैड टू डू प्रेजेंटेशंस इन ऑल, लाइक हर सब्जेक्ट में प्रेजेंटेशंस होती थी, ठीक है ना. तो हर प्रेजेंटेशन के लिए एक डेजिग्नेटेड बंदा होता था जो टेम्पलेट बनाएगा, ठीक है ना. वो ऐसा चार पांच टेम्पलेट डिज़ाइन करता था, फिर वो बंदा टेम्पलेट में हम लोग सब अपनी टिप्पणियां देते थे कि नहीं यार ये टेम्पलेट सही नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है. और फिर बाद में वो बेचारा मेहनत कर करके टेम्पलेट अप्रूव होती थी हमारी इंटरनली, हम जो ग्रुप होता था जिसमें काम करते थे. तो एक, जैसे मैंने कहा ना, पांच छह लोगों का अगर ग्रुप है तो एक बंदा डेडिकेटेड टेम्पलेट डिजाइनर होता था, दूसरा होता जो प्रेजेंटेशन बनाता था, तीसरा होता था जो बकायदा प्रेजेंटेशन में क्या क्या चीज़ें डालनी हैं वो यू नो लिख के रखता था, यानी कि एक वर्ड इस पे क्या कहते हैं वर्ड के एक पेज पे सब लिख के रखता था. और जो प्रेजेंटेशन बना रहा है वो टेक्निकली उसमें से कॉपी पेस्ट करके उसका स्लाइड वाइड बनाएगा, एनिमेशन डालेगा, ये वो. और फिर एक दो बंदे होते हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती कि जाओ भाई तुम प्रेजेंट करो, तो वैसा होता था. अब क्या हो गया, ये सारी चीज़ें ना AI के थ्रू फटाक से हो जाती है. बुक्स इजीली मिल जाती हैं AI से, बिल्कुल. बुक्स भी इनफैक्ट अगर आपको टाइम नहीं है पूरी बुक पढ़ने का, कोई चीज़ है सेल्फ लर्निंग बुक है या कुछ ऐसा है सेल्फ हेल्प बुक है, आपको टाइम नहीं है पूरी बुक पढ़ने का, तो आप एआई को कहो अच्छे से प्रॉम्प्ट करके बोलो कि भाई मुझे, मेरे पास टाइम नहीं है, ये जो बुक है इस ऑथर की, मुझे इसको ऐसा समझा कि भाई मैं 5 मिनट में ये पढ़ लूँ तो समझ जाऊँ कि बुक में क्या लिखा है और उसको मैं इंप्लीमेंट अपनी लाइफ में कैसे करूँ। क्योंकि पढ़ना एक चीज़ होती है, बुक में जो लिखा है उसे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने का अलग चीज़ होती है। सो देन यू नो इट्स वेरी वेरी नाइस टू यू नो यूज़ दैट लिटिल थिंग दैट एआई डज फॉर यू। इट ऑब्वियसली बिकॉज देर इज सो मच डेटा दैट इट हैज़, इट विल एक्चुअली टेल यू दैट ओके दिस 200-page बुक का पूरा जो सार है संक्षिप्त में वो ये है, this is what the book says and these are the pointers and if you have to implement it in your life then do A, B, C, D, E, F, G. Bang! आपको 5-6-7 घंटे बैठ के वो बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 10 मिनट के अंदर आपने वो पढ़ लिया। और फिर अगर आपको चाहिए कि भाई उसका एक मेरे को पोस्टर बना के अपने दीवार पे लगाना है, तो भाई एआई को बोल दो सुन भाई ये जो हेडलाइंस है इसकी एक पोस्टर बना दे मेरे लिए फटाक से ताकि मैं अपने दीवार पे लगा दूँ, वो भी बना देगा। अब ये बोलोगे मेरा फेवरेट पॉइंट फेवरेट फॉन्ट जो है वो एरियल या टाइम्स न्यू रोमन है, तो टाइम्स न्यू रोमन भी आपको फॉन्ट में डाल के बना के दे देगा सब कुछ, आपको सिर्फ बोलना है। ये जो है ना बेसिकली अलादीन का वो चिराग है जिसको आपने घिस के जब जिन निकलता ना बाहर उसको बताना है कि क्या करना है और वो आपके लिए कर देगा। और इट्स नॉट लिमिटेड टू 3 wishes, हाँ प्रॉब्ली यू नो 5-7 things इन अ डे, क्योंकि फिर वो बोलेगा अच्छा सुनो आज का काम इतना हो गया, अब जो है ना मैं एक लोअर वर्जन पे चले जाऊंगा, अब मैं आराम आराम से काम करूंगा, स्लोली काम करूंगा, और फिर उसके बाद बोलेगा चलो ठीक है आज का कोटा खत्म, आज से ज़्यादा इससे नहीं होगा, नहीं तो फिर पैसे वाला काम ले लो, यानी कि प्रो वर्जन ले लो, प्लस वर्जन ले लो, जो भी है। सो वॉट एवर इज फ्री यूटिलाइज इट, वाई डोंट यू वॉन्ट टू यूटिलाइज इट, है ना? सो मेक यूज ऑफ ए आई एंड डू लेट मी नो वॉट इज द थिंग, वॉट आर द थिंग्स दैट यू यूज AI for 0586861003. Dear sir, very nice conversation. I'm trying to learn. I want sell my shop. कैसे करूं? अच्छा इनकी एक दुकान है, इनको दुकान बेचनी है, दुकान ही बेचनी है आपको कि दुकान में जो सामान है वो बेचना है, हैं मुझे ये ज़रूर बताइए ताकि फिर मैं आपको थोड़ा सा जितना मुझे आता है उस हिसाब से मैं आपको बता पाऊँगा। बट हाँ AI लर्न कीजिए, आपकी दुकान का सामान भी बिक जाएगा और अगर दुकान बेचनी तो दुकान फिर बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दुकान फिर दुकान में सामान जो है वो बिक जाएगा आराम से AI की मदद लेके, पोस्टर वोस्टर बनाओ, वीडियो वीडियो बनाओ, AI से पता नहीं क्या क्या लगता है यार, ठीक है ना? तो आप मुझे बताइए ज़रूर क्या आपको चाहिए, बट आई टेक अ क्विक शॉर्ट ब्रेक एंड अच्छा पूरा दुकान बेचना है उनको, ये कैसे करें? आई वॉन्ट टू सेल माई शॉप, कैसे करूँ? पूरी की पूरी दुकान बेचनी है इनको, ये तो भाई मैं ये एक काम करता हूँ ना, मैं भी AI से पूछता हूँ कि कैसे दुकान बेचते हैं, क्योंकि मुझे भी आइडिया नहीं है कि दुकान कैसे बेचते हैं, ठीक है ना? बट हाँ AI को पता होगा, या तो फिर अगर हमारे सुनने वाले हैं जिनमें से जिनको अगर पता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है इनकी, ठीक है ना, तो अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान किसी को खरीदनी हो तो बता दीजिएगा, यहाँ पर हमारे पास एक मैसेज आया जिनको अपनी पूरी दुकान बेचनी है, वरना मैं AI से पूछूंगा। ऑलराइट, सो आई टेक अ क्विक शॉर्ट ब्रेक, कम बैक, व्हेन आई कम बैक we'll talk about what's happening in the financial markets and with that also try and see what is happening with you in the AI world. 0586861003. Main hoon Neil, this is TSB.
0: TSB Talk Sport and Business. Talk 100.3. Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business. This is Talk 100.3. The Journal on TSB. The latest share market and stock market news and updates on Talk 100.3.
1: Hello and welcome to TSB Talk Sport and Business. I'm Neil Oja on Talk 100.3. We'll have a watch on what's happening in the Dubai financial markets. Down by 0.8% today. A massive slide came through, going down by 45.89 points. MR down by 2.43%. Talabat down 4.83%. Emirates NBD up by 0.22%. And Diva also went down by 0.39% in the day's trade. HLD, the public warehouse, down by 5%. And National Cement Company was the biggest gainer of the day, 3.6% up while trading today. Main hoon Neil, this is TSB.
0: TSB, talking sports, business and more. Talk 100.3. TSB, business advice, tips and resources. Talk 100.3.
2: I'm Maura Fogarty with your business update. The U.S. has announced new tariffs of between 10 and 12.5% on dozens of countries following an investigation into forced labor practices. It's the first significant effort by the White House to resurrect levies ever since the U.S. Supreme Court ruled that Mr. Trump's so-called Liberation Day tariffs were unlawful. China, the EU, India, Japan, and the UK are among the major economies targeted by the proposal. The U.S. says it'll impose these new tariffs on 60 countries for not doing enough to prevent the import of goods using forced labor. Well, President Trump has also signed an executive order asking AI developers to voluntarily submit their most capable models for government cybersecurity tests before releasing them to the public. It comes as there's increased security fears in Washington over powerful new AI systems. U.S. agencies would get up to 30 days to test the models before they're released to organizations outside the government. Our North America technology correspondent Lily Jamali reports that this move signals Mr. Trump is shifting his strategy on AI.
3: The signing of this executive order signals that this administration is willing to regulate AI. It's a very different positioning than they had on this issue just a couple of months ago when they were even trying to stop U.S. states from regulating the industry.
2: And a recent report from UKG, a human resources technology firm, shows that a quarter of employees surveyed said they're likely to miss work by coming in late, leaving early, or skipping work altogether because of the World Cup. 22% say they will still come into work even if they're tired and exhausted. And nearly a third of the respondents said they'll take at least one day off to watch the football matches. That's your business update.
0: This is Talk 100.3.
1: Hello and welcome to TSB Talk Sport and Business. I'm Neil Oja. Before we go into the news, मैंने सोचा मैं प्रणव को पकड़ के लेके आता हूँ. ये हमारा जेंजी बच्चा है, ठीक है ना? तो ये जेंजी लोग जो है आधा काम अपना जो है मम्मी पापा से करवाते हैं और बाकी आधा एआई से करवाते हैं, खुद कुछ नहीं करते हैं, ठीक है? तो प्रणव, सबसे पहले ये बताओ कि एआई,
4: राइट?
1: ठीक है, आई एम श्योर दैट you see so many people around you using AI.
4: Absolutely.
1: In various ways, and sometimes you feel like, wow, that's so amazing, and sometimes you feel like, bhai, mat kar tu AI, the AI should be banned for you.
4: Yes.
1: Where do you fall in the usage of AI? How much AI do you use, and what all in what all things do you use AI?
4: I think in the creative industry, AI has certainly made a bunch of minds and a lot of the skill sets redundant or lazy. And that is one of the biggest issues that we face in terms of processing, in terms of having that freedom and communication. AI certainly has, you know, been a drawback in that department. But from a personal experience, and you said Gen Z, to Gen Z jaise hum hain, harkatein bhi usi tarah ke hote hain.
1: Bilkul.
4: So I've used Gen Z responsibly and a bit irresponsibly as well. I'll start with the latter part. I wanted to do an experiment, right? I tried using AI for a dating app.
1: Okay.
4: Right. I tried using it for an AI. I used AI for a dating app experience. And trust me.
1: So you created a dating app?
4: No. I created a profile with the help and the experiences of AI.
1: Okay.
4: Right. So you try and see what are some of the best prompts or some of the best style of photos that can get the most likes or the most swipes. What are the details that you provide? What are the lines that get the most, eye catches? Whatever it is that is interesting, right? And I can tell you for sure. And then I had also created a profile which, by my own experiences, the way I talk, the way I feel, more simpler, a little more organic.
1: Fair.
4: Even to AI, you can feed in your own sort of senses, your own taste, whatever. Now, my personal experience, AI let me down.
1: Okay.
4: AI did not live up to the expectations.
1: Oh.
4: Yes.
1: But thank you.
4: Compared to the natural profile, and I think the natural profile worked a lot better compared to AI. And I just think that a lot of people
1: when you say it didn't work or didn't live up to your expectations, matlab kya hua? You didn't get the number of swipes, the right swipes that you were expecting?
4: Well, that's the parameter for whether it's worked or not.
1: Okay, so AI, so how many versus how many? As in like, tumhara natural profile pe tumhe kitne right swipes aaye the aur AI ke through kitne aaye?
4: Well, instead of numbers, let me just say that it was 3x better when you do it normally.
1: Achha, theek hai, done. Fair.
4: Yani 2x, 3x.
1: Fair. Yani ki agar tumhe AI ke through 100 aaye the, to natural mein tumhe 200 aaye the. I mean, you know, inflated numbers.
4: Dude, but 100 yeah. are absolutely imaginary, especially for men on dating apps.
1: Chalo, let me be very honest about that. Done. So then, one right swipe AI ke through came through and normally mein two came through.
4: Let's put it that way.
1: Okay, okay. Right? Chalo, ease of calculation.
4: Ease of calculation.
1: Ease of calculation. So, where did AI go wrong in your analysis then?
4: I think AI, in a sense, supports everyone with the similar or same answers.
1: Mm-hmm.
4: Regardless of, or you could say that, oh, I love sport, oh, I love music, I love whatever. I think
1: generic.
4: It has a set template.
1: Right.
4: Right. And then you have to be extremely specific and absolutely, you know, ChatGPT, or Claude, jo bhi aap use karte ho, Gemini, you have to sit down and you have to completely open yourself up in order for it to tailor make it to you. And uske baad bhi, there's no success rate because then AI is thinking to your words.
1: Right.
4: Right. It's talking your tune.
1: Hmm.
4: Then it doesn't have a track of, okay, what are the matches? What are the prompts that, you know, statistically worked a lot more? Kyunki in cheezon ka bhi surveys hote hain, wherein people from different parts of the world say, hey, this is a generic prompt. This is something that worked for me. And that's, I think, somewhere AI, as much as you want to try and tune it to your language and to your words, it loses certain grip. It loses statistics.
1: 100%. I mean, see, it is a large language model. Okay, agreed. But it may not have the EQ of the humans.
4: Correct.
1: ठीक है ना, जो emotional quotient होता है वो हमेशा missing होता है. Intelligence quotient होगा, शायद वो आपसे ज़्यादा होगा, आपसे बहुत ज़्यादा होगा. ठीक है, but EQ जो है missing है and that's what makes us humans so unique कि EQ और IQ का जो right combination है, वो हम put forth कर सकते हैं and that's why even when you read some emails or some scripts that are written by say a ChatGPT or a Claude, you can see it and say it कि boss ये इंसान ने नहीं लिखा है, this is not human. ठीक है ना, so ये चीजें जो होती है ना, ये थोड़ा सा कहीं पर ऐसा लगता है कि you know ये शायद time लगेगा AI को, but slowly and steadily as you give time to AI, it does tend to become closer. I wouldn't say just as you are, but probably can almost come very close to the real you in some way if you train it the right way.
4: But you know, I have a different or a rather differing point on that, Neil. You're right when you say it can come closer, it can get better, but my thought is I don't think it should. Even on these apps, when you start talking to people or when you compliment your own friends or your own, you know, family members, or sometimes it could be someone you met at an event and you just want to, you know, compliment their work or whatever it is, or chai ab le lo, you want to, you know, speak well with someone. A lot of the times they might be joking, sometimes in a serious way they might just say, oh, haha, did you chat GPT this line?
1: Right, huh?
4: People are already starting to think this
1: true.
4: Way. But aap jitne bhi normal ya fir aap koshish karte ho to, you know, keep words generic or organic, at the back of their mind, people are thinking a good compliment or a perfect line has already been used by AI.
1: Which I think
4: we're sending people backwards.
1: It's not wrong, or it's not wrong to use AI for, even if it's for a compliment, even if it's for a message.
4: Right.
1: And I believe so, because sometimes you might fail to express what you really want to say. ठीक है ना, आपको दो लाइन में अगर कुछ लिखना है और उसके लिए अगर आपने दिमाग में आपके पांच लाइनें चल रही हैं, and you want to make it concise, there's nothing wrong in asking help from AI. ठीक है, आपने चैट जीपीटी से पूछ लिया, and the ones who actually look down upon it saying कि अरे अच्छा चैट जीपीटी, हाँ, I am like, dude, अगर यूज किया चैट जीपीटी तो क्या गलत है? You finally you've got a good product, finally you've got a good compliment in your case, like you're complimenting them, then it's a good compliment, receive it, but be gracious about that.
4: अगर मैं वही मैसेज या फिर वही तरीके का कॉम्प्लीमेंट, इफ दे आर नॉट एबल टू कैरी आउट नेचुरली पर्सन टू पर्सन, देन इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक yikes, there's a big gap over here.
1: That's
4: a conversation
1: right.
4: gap, tonality gap, a formality gap, you know, all these sorts of thing makes, you know, a good texter wouldn't necessarily be someone who's good in conversations
1: in true,
4: person.
1: Which is a right? fact invariably.
4: And AI is going to create that divide further and further is my concern. Especially amongst the Gen Zs. Kyunki hum to words use bhi nahi karte.
1: Haan, tumko to
4: text is TXT.
1: Haan, exactly. Tumko
4: we say even for
1: IDK.
4: Using the word, IDK, LOL, IDK, good night, GN.
1: नहीं, GN नहीं, GL.
4: GL?
1: Get lost.
4: Oh my God. you know, instead of saying honestly, do you know what we use? NGL.
1: Not gonna lie. Yeah.
4: Why don't you just say honestly?
1: Yeah.
4: What's wrong with that?
1: Exactly. No, see, I understand where, you know, where it's all going. I mean,
4: right.
1: see, language you know, it's a cycle.
4: Mm-hmm.
1: If you actually go to the basics of language, like way back, mm-hmm. take a look at the old caves or the Egyptian, what do you say?
4: The scripts.
1: The Egyptian scripts. Yeah. The you know, वहाँ सब में क्या था? वहाँ पे लंबे लंबे words नहीं लिखे जाते थे. There were signs and symbols.
4: Yeah.
1: That would designate things. That would, you know, mention things mm-hmm. in very tiny little signs. Right. We humans are going back to that era. We are using emojis.
4: Yeah.
1: We are using NGLs and we are using IDKs. What is it? It is nothing else but signs that some human will understand at this point in time. That is exactly what used to happen back in the days. Mm-hmm. That we put a triangle or uske beech mein aisa goal dal diya, to samajh mein aayega chahiye triangle or uske beech mein goal kya hai, right? On the roads when you're driving, those signs are still prevalent, right?
4: Yeah.
1: Ek triangle hai, iska matlab kya hai? Give way. ठीक है व्हेन यू ड्राइविंग एक ट्रायंगल है उसके बीच में एक स्पीड बम्प है तुम्हें पता है कि स्पीड बम्प है एक सर्कल के ऊपर एक रेड मार्क मारा हुआ है बीच में पी लिखा हुआ है मतलब नो पार्किंग ठीक है ना दीज आर साइंस एंड सिंबल्स सो वी ह्यूमंस हैव ऑलवेज लव्ड दीज साइंस एंड सिंबल्स लैंग्वेजेस मेड इट इलैबोरेट
4: राइट
1: लैंग्वेजेस ने सब चीज को इलैबोरेट कर दिया कि तुम हर चीज को डिस्क्राइब करो एंड देन देयर वर ऑथर्स एंड पोएट्स हु मेड लैंग्वेज ब्यूटीफुल यूसेज ऑफ वर्ड्स ब्यूटीफुल एंड गॉर्जियस एंड वी फेल लव इन इट फेल इन लव विद इट नाउ We are going back to the caveman. We are trying to be the same old guy जो एक साइन से बोलता था ये ऐसा अंगूठा दिखा दिया
4: थम्स अप
1: थम्स अप है कि नहीं बट कितना हम चैट जीपीटी यूज करते हैं कितना हम ये सब यूज करते हैं विल ऑब्वियसली कीप टॉकिंग मोर अबाउट इट एंड योर थॉट्स ऑन हाउ मच ऑफ एआई डू यू यूज एंड व्हाट डू यू यूज इट फॉर 0586861003 दैट्स माय नंबर सेंड योर थॉट्स आप किस चीज के लिए यूज करते हो प्रणव की तरह डेटिंग एप्स पे अपना प्रोफाइल बनाने के लिए यूज करते हो या और कोई चीज के लिए यूज करते हो हमें बताइए ऑन 0586861003 I'm Neil Oja with me, Pranav Prasanna.
0: This is Fan Network News from the BBC.
5: BBC News with Moira Alderson. Kuwait says Iranian drones have struck a terminal building at its international airport, killing one person and wounding several others. Flights have been suspended or diverted. The attack comes as renewed skirmishes between US and Iranian forces test a fragile ceasefire. Six people are reported to have been killed in Israeli strikes on the city of Tyre in southern Lebanon. There are also reports of two Israeli airstrikes on roads. The Israeli military said sirens had sounded in northern Israel because of what it described as infiltration by hostile aircraft. Ukraine says its drones have targeted St. Petersburg as a major economic forum opens in the Russian city. President Zelensky said an oil terminal and a nearby port were hit. Malawi says it will help repatriate citizens from South Africa following a wave of anti-immigration protests in parts of the country. The government says support will be provided to Malawians who have voluntarily requested assistance to return home. At least 21 people have been killed and several more injured after a fire broke out at a restaurant in the Indian capital Delhi. Officials said many of those who died were foreigners. France's Consumer Protection Agency has fined the Chinese fashion retailer Shein $25 million over a range of allegations. Shein said the fine was disproportionate and it would appeal. A study suggests people in Britain will spend an average of 4 years and 8 months of their lives using their mobile phones without a clear purpose. The study found evidence of poorer sleep and lower overall mental well-being. The disgraced former Republican US Congressman George Santos is reportedly under investigation for alleged insider trading. He's said to be accused of placing a bet on his attendance at the State of the Union. Santos told NPR the investigation was news to him. BBC News.
0: Fan Network News from the BBC. Talk music. Brought to you by Insurance.

0: splendid years of Insurance Market Metro Station. From Sheikh Zayed Road to your screen, I am always nearby. Insurance Market.
1: Talk 100.3.
2: The Journal on TSB. The latest share market and stock market news and updates on Talk 100.3.
3: Hello and welcome to TSB Talk Sport and Business. Let's have a check on what's happening in the financial markets. In the Dubai Financial Market General Index closing today earlier at 3 p.m, 0.8% lower. MR was down by 2.43%, Talabat down by 4.83%, Diva also down by 0.39%. Emirates NBD, the bankers, went up by 0.22%. The biggest gainer today was National Cement Company, went up by 3.6%, and Emirates Ream Investment went up by 2.98%. We'll check the indices as well. Real estate down by 1.96%, industrials down by 0.5%, financials down by 0.33%, and utilities also down by 0.45% in the day's trade. I'm Neil Oja, this is TSB.
1: This is Talk 100.3.
2: TSB Sports Headlines. Talk 100.3.
4: BBC Premier League update from the home of Premier League football.
5: Hello, I'm Conor O'Grady at the BBC Sports Centre. The former Newcastle United and Manchester City manager Kevin Keegan has revealed for the Us the most advanced form of cancer. His family announced his diagnosis in January. Keegan now says, though, that his cancer has spread to other parts of his body. The former Newcastle United goalkeeper Shaka Hislop, who has undergone treatment for an aggressive form of prostate cancer himself, gave this reaction to the news.
6: It's been difficult, given everything that Kevin Keegan continues to mean to me. He signed me as a Premier League player back in 1995. And in truth, epitomized what it meant to be, not just a great football player, not just a great manager, but a great human being. I think he was an example of all that's good in this game. And now hearing this diagnosis, again, difficult to take. Cancer respects no one. We know that. And to see it kind of play out in the way that it has over the last few hours has been sobering.
7: How do you feel he'll be approaching this difficult moment that he's in?
6: As dire a diagnosis as it may be, he continues to find humor in it. He continues to live life fully, as he always has done. Takes on big challenges with a smile and a sense of humor. And every single time he's won those challenges, and you want to back him again this time around.
5: That's Shaka Hislop speaking to the BBC's Claire McDonnell. Elsewhere, Atletico Madrid, Barcelona and Real Madrid are being linked with a move for Chelsea's Marc Cucurella. For more football news from the BBC, go to bbc.com/football.
4: BBC Premier League update from the home of Premier League football.
1: This is Talk 100.3.
3: Hello and welcome to TSB Talk Sport and Business. I'm Neil Oja on Talk 100.3. We're talking about usage of AI within our daily lives, right? Kitna you AI use karte ho aap day-to-day life mein, if you're using it for work or personal, creativity, curiosity. How are you using AI? And that is something that while you were answering the questions, and quite a few of you gave an answer saying that, yeah, I use AI to write emails, to create presentations, so far and so forth. So many things are happening. So I thought, why not ask AI to give me a report on what is happening within the UAE as far as AI usage is concerned and try and get it right with you guys. Theek hai? And then I got a brilliant answer. It said that the UAE is currently one of the most AI active countries on the planet. Kya baat hai, taali bajao yaar, apne liye, aapke liye, mere liye, hum sab ke liye taali bajao aur jhoot bolna band karo. Kya hai, main ChatGPT use nahi karta, sach batao, kyunki yahan pe kya hai ki 97% of UAE residents say that they use AI for work, study or personal life, which is according to a 2025 study. KPMG ne ye research kiya and they came up with this. 70.1% of the UAE working age population, that's till 64, actively uses generative AI tools, making UAE the first country in the world to cross the 70% mark. Bhai, is baat pe to taali bajni badni chahiye. Kya baat hai? So if you are saying that you're not using AI you know, being in the working age population that you are, so you're not a part of the 70.1%. Are you the part of the 29.9%? Is it 80% of UAE professionals now use AI regularly at work, and 59.4% of the working age residents were using AI daily in 2025, the highest workplace AI adoption rate globally. Now, what is AI used for in everyday life? Chahe wo kaam ho, ghar pe ho, kya hai, jo bhi hai. 0586861003. Send me your messages and tell me, what do you use AI for? 0586861003. I want to hear from you. Ki kaun si cheez mein aap AI use kar sakte. You can always call me on 800-81003. You can call me. Dono free. Aap agar message kar rahe ho, to that is WhatsApp pe message kar rahe ho, to WhatsApp pe message to free hota hai. 0586861003. ठीक है ना, यहाँ पे भी AI से मैसेज मत लिखवा दीजिएगा, कर दो यार, लिखवा दो भी चलेगा. और अगर कॉल करना है तो 800-81003 इज माई नंबर. अगेन, दिस इज अ टोल फ्री नंबर, यू डोंट हैव टू पे फॉर दैट. सो यू कैन कॉल मी ऑन दैट नंबर एंड टेल मी, व्हाट डू यू यूज AI फॉर, व्हाट डू यू यूज AI फॉर. बिकॉज यहाँ पे तो लिखा है कि भाई UAE में 97% of UAE residents have used AI at some point in time. So you can't lie. Pranav ne to sach bata diya ki wo kaam ke liye AI ko use hi nahi karta. Wo dating apps pe apni profile ko improve karne ke liye AI use karta hai. Aap kiske liye karte ho? 0586861003. For me, I personally feel it's for research, it's for content, primarily for research. I have conversations with my AI. You know, मैंने मेरे AI को इस तरह से train किया है कि वो मेरे साथ में debate करे, reasoning करे, question करे मुझे. मैं जो कहता हूँ उसके ऊपर अपनी टिप्पणियाँ दे, अपने opinions दे, ताकि हमारे opinions को जो है हम थोड़ा सा और strong build कर सके. वैसे तो it helps me in understanding concepts, understanding the reason behind, you know, why a certain thing is happening. I am a big why person. You know, curiosity hamesha rehti hai. So, main in cheezon ke liye use karta hu. Aap kaun si cheezon ke liye use karte ho? And while you're messaging in, Jagdish ka message aaya. He says, I use it for my reports and emails. Very good. This is good. There's a message come in from Jyoti. She says, I haven't told this to anyone, but all my social media captions are written by AI. Very nice. No, nothing wrong with that. I, believe me, I'm someone who will never say anything condescending if you are using AI. I will never say, अरे हाँ, चैट जीपीटी. नहीं, मैं वैसा भी, जैसे वो एक बार पता ना मोदी साहब ने कहा था क्या, ये तो पबजी वाला है. एक लेडी आई थी, उन्होंने कहा था कि मोदी जी, मेरा जो बेटा है वो पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता, पूरा दिन गेम खेलता रहता है, तो प्लीज़ उसे आप कुछ कहिए, इंस्पायर हैं. तो मोदी जी ने हंसते हुए कहा, ये तो पबजी वाला है. और फिर बाद में क्या किया, पबजी को ही बंद कर दिया इंडिया में, कि ना रहेगा पबजी, ना कोई खेलेगा पबजी. है कि नहीं, देखो ऐसे करते हैं इंस्पायर. सो देयर इज अ मैसेज दैट्स कम इन फ्रॉम 8146, नाम नहीं लिखा है, रेनू सेज, आई रिसेंटली यूज्ड इट अ लॉट ड्यूरिंग ट्रैवलिंग बिकॉज वी आर वेजिटेरियंस एंड प्लस टू नो व्हाट काइंड ऑफ सुविनियर्स आई कैन बाय फॉर फ्रेंड्स एंड फैमिली. वेरी नाइस. सी, यू हैव टू बी स्मार्ट टू यूज द स्मार्ट टूल्स दैट आर अवेलेबल. इसलिए मैं कहता हूँ कि ये AI जो ना वो कभी ह्यूमंस को रिप्लेस नहीं करेगा, बिकॉज ह्यूमंस आर स्मार्टर देन AI. ऑलवेज आर टू स्टेप्स अहेड. सो रेनू, वेल डन, एंड आई एम श्योर दैट you got some good answers, because I'm a vegetarian myself, and you know, when we travel, I also do use a lot of AI to try and understand ki kahan pe kya milta hai vegetarian khana, kahan pe kya milega, reviews check karta hu, kyunki har ek google page pe jaake, google pe jaake har ek you know article pe jaake aap reviews nahi pad sakte ho na, and most of these reviews could be paid reviews. You don't want that to happen. So yeah, that's a good thing that you've done, Renu. 0586861003. And while you're telling me, मेरे पास ये रिसर्च आई है. रिसर्च के मुताबिक, व्हाट आर पीपल एक्चुअली यूजिंग AI फॉर इन द UAE? एट नंबर 8 इज इमेज जनरेशन. सोशल मीडिया पे ग्राफिक्स डालना, लोगोस डालना, यानी कि जितने भी ग्राफिक डिजाइनर हैं ना, वो उनकी बेचारों की थोड़ी सी हवा तंग हुई हुई है. नंबर 7 पे है मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, दैट इज ट्राइंग टू लुक आउट फॉर कैंपेन आइडियाज, SEO करना, एड्स के लिए कॉपीज बनाना, ये सारी चीज़ों के लिए. नंबर 6 पे है कोडिंग एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. भाई ये डेवलपर्स के लिए बहुत आसान हो गया. AI में प्रॉम्प्ट डालो, AI फटाफट जो है सारे आपके कोड्स वोड्स जो है बना के दे देता है. विदाउट नोइंग हाउ टू कोड, यू कैन एक्चुअली क्रिएट एप्स. ट्रांसलेशन, this is good, you know, because many times you don't know what the text written means, right? You don't know how to read that particular language. Agar Arabic mein likha aapko Arabic nahi aati, aap France jaate ho, French mein likha aapko pata nahi kya hai, to you can use AI to translate that. नंबर फोर पे है एजुकेशन एंड स्टडिंग, होमवर्क असाइनमेंट्स एंड एग्जाम प्रिपरेशन. नाउ असाइनमेंट्स में अगर आप एआई को डायरेक्टली कॉपी करते हो तो बॉस एआई के पास एआई को ढूंढने वाला भी टूल है, ठीक है ना. तो फिर बाद में आपके जो प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं ना, वो पहचान जाते कि अच्छा तुमने एआई से कॉपी किया. मत करो, इंस्पायर हो जाओ, लर्न करो, वहां से सीखो क्या कॉन्सेप्ट है, अंडरस्टैंड करो एंड देन फिर अपने हिसाब से लिखो. वर्क प्रोडक्टिविटी एट नंबर थ्री, which means meeting summaries, presentations, proposals. Oh yeah, in fact, you know, we use a tool within our office, which, you know, when we have a big meeting, to meeting ke baad wo puri meeting ka jo summarization hai wo ho jata hai aur wo hum sabko email pe aa jata hai ki acha ye meeting mein hua, to kisi ko pointers likhne ki zarurat nahi padti ki meeting mein ye baat hui thi. Number two pe hai research and information search, replacing Google for quick answers. Now this is what my dad uses it for. You know, he wants to do research, he wants to have questions, he has so many questions, he's very curious, so he keeps looking for answers and fir ab wo Google pe aur YouTube pe random logo ke videos dekhna unhone band kar diya hai. वही मैंने बताया ना आपको कि अब वो यूट्यूबर्स को रैंडम बोलते हैं. तो उन्होंने पहले बहुत विश्वास करते थे यूट्यूबर्स, उन्होंने कहा वो इस यूट्यूब पे मैंने देखा था, यूट्यूब पे ये वीडियो मैंने देखा था. नाउ ही ट्रस्ट चैट जीपीटी मोर देन एनीथिंग एल्स, सो ही डज हिज रिसर्च एंड लुक्स अप फॉर थिंग्स दैट ही इज क्यूरियस अबाउट ऑन चैट जीपीटी. नंबर वन पे है, क्या है नंबर वन पे, बताओ. चलो ठीक है, नंबर वन पे है राइटिंग एंड कॉन्टेंट क्रिएशन, emails, reports, social media content, video content. So all of the captions and writing work, and primarily ChatGPT ho, Claude ho, ye kya hai? Ye large language models hai na? Yani ke basically LLMs hai, yani ke ye aapko language mein help karte hain. To agar aapko captions likhna hai, agar aapko kuch creatively likhna hai, to ye sari cheeze jo hai, wo bahut zyada acche se karta hai. Emails hai, reports hai, lekin mujhe kahin par lagta hai ki wo it takes away the human side of it. So somewhere one has to understand that there is a humanness in your email. There is a certain way you used to write your emails, right? So apne jo 5-6-10 emails hai na, iska main aapko trick batata hu. How to make ChatGPT write like you. Batao? Nahi jaane do. Nahi bataunga. I mean, agar, unless you want me to say it, then I will say it. No, why should I just otherwise say it randomly? Theek hai, if you want me to say it, then tell me. Ke, give me how to make emails like, make ChatGPT write emails like I do. 0586861003 पे अगर आप मुझे कहोगे कि बताओ तो मैं बताऊंगा, है ना. वो ऐसा करते हैं ना Instagram पे लोग के DM me email, I will give you the prompt, give me DM me this and I will do this. मैं भी ऐसा ही कर रहा हूँ, रेडियो पे कर रहा हूँ मैं ये चीज़ें, ठीक है ना. आप लोग बताओ मुझे, इफ़ यू वॉन्ट इट तो आई विल डेफिनेटली टेल यू. सी अच्छा क्या बात है, मंडे 15 जून इज ऑफ न्यू इस्लामिक ईयर. ओके, इस्लामिक न्यू ईयर आप ये कहना चाहते हो. अच्छा, एक मैसेज आया रैंडमली 8840 से, ठीक है ना. बोल दो मुझे प्लीज़ यार, बोल दो मुझे, ठीक है. आपको बोल दूंगा, सीक्रेटली बोल दूंगा. ये कौन है, खलील है. खलील कहते हैं कि ही वॉन्ट्स दिस लिटल इन्फॉर्मेशन दैट आई हैव ऑन हाउ टू मेक चैट जीपीटी राइट ईमेल्स लाइक यू डू. Because obviously when you ask ChatGPT to write an email कि आपको ऑफिस में ये ईमेल लिखवाना है कि यू नो ये चीज़ की रिपोर्ट मैंने भेजनी है, सेल्स की रिपोर्ट हो गई, प्रोडक्शन की रिपोर्ट हो गई, जो भी रिपोर्ट्स हैं, तो ChatGPT will write in a very generic way which is not your style, है ना. आपकी स्टाइल बहुत अलग होती है. सो इफ़ यू वॉन्ट मी टू गिव यू द वे टू मेक ChatGPT write emails like you, then in that case you have to tell me, ठीक है ना. आप अगर बोलोगे कि हाँ यार नील बता दो, तो फिर मैं बता दूंगा, पक्का बताऊंगा. आई नो ट्रिक. मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है मेरे ईमेल्स को लिखने की. हम ज़्यादा ईमेल लिखते भी नहीं हैं यार, हमारा काम उतना पड़ता नहीं है ईमेल्स का. बट अगर ज़रूरत पड़ी तो आई नो हाउ टू मेक इट. बट या 0586861003 इज़ माई व्हाट्सएप नंबर. क्विकली सेंड इन दैट व्हाट्सएप दैट या इफ़ यू वॉन्ट अ लिटिल हेल्प टू मेक योर ईमेल्स लुक एंड रीड लाइक यू डू बट इट्स रिटन बाई चैट जीपीटी, आई कैन डेफिनेटली हेल्प यू विद दैट. AI का यूजेज बाय एज ग्रुप भी अलग अलग होता है, ठीक है ना. बच्चे जो हैं 18-24 जो यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, दे बेसिकली आर लुकिंग फॉर एजुकेशन, असाइनमेंट असिस्टेंस, लर्निंग लैंग्वेजेस फॉर दैट मैटर, कंटेंट क्रिएशन. जो 25 के ऊपर वाले हैं वो बेसिकली अपने काम के चक्कर में साइड हसल, मार्केटिंग, कोडिंग, बिजनेस, प्रेजेंटेशन, ये सब में लगे हुए हैं. जो 35 के ऊपर वाले हैं उनका यूजेज अलग है, बिजनेस प्लानिंग, रिपोर्टिंग, डेटा एनालिसिस, टीम प्रोडक्टिविटी, ये सारी चीज़ें 45 के ऊपर वाले हैं वो बोलते हैं अब मैं क्या करूँ, ट्रैवल प्लानिंग, क्योंकि भाई पैसे कमा लिए उन्होंने, है ना। हेल्थ के बारे में चेक करते रहते कि अच्छा मेरा ब्लड प्रेशर इतना हो गया मैं क्या करूँ, ब्लड शुगर इतनी हो गई है मैं क्या करूँ, ठीक है ना। पर्सनल रिसर्च जो है वो ज़्यादा होती है, बच्चों के बारे में पूछते कि माई चाइल्ड इज़ नॉट लिसनिंग टू मी, वॉट डू आई डू, माई चाइल्ड 10-year-old डज नॉट वॉन्ट टू ईट वेजिटेबल्स, वॉट डू आई डू, तो ये सारी चीज़ें पूछते हैं वो। बट काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो होती हैं, एंड कुछ बहुत ही अनोखी चीज़ें होती हैं। AI का यूजेज इन WhatsApp फैमिली ग्रुप्स, फैमिली में ग्रुप में सुबह सुबह के गुड मॉर्निंग मैसेजेस हैव बीन रिप्लेस्ड बाय AI मैसेजेस, एंड ब्रो ये तो अलग ही लेवल का होता है। सुबह मैं मैसेजेस पढ़ता हूँ मेरे फैमिली ग्रुप में, बोलता हूँ अरे भाई प्लीज़ इनसे AI छीन लो, मत करवाओ। पहले सुबह सिर्फ गुड मॉर्निंग आता था, अब गुड मॉर्निंग के साथ में इतनी सारी चीज़ें आ जाती हैं, मैं कहता हूँ नहीं भाई मैंने खोलना ही नहीं है। देर आर 270-100 मैसेजेस ऑन माई फैमिली ग्रुप एंड द रीज़न इज़ AI, दैट इज़ वॉट इट इज़। क्या करे, बंदा जो है सो है। लेकिन आप लोग बताइए 0586861003 पे इफ़ यू वॉन्ट मी टू टेल यू हाउ टू राइट ईमेल्स लाइक यू डू बट डन बाय ChatGPT, it shouldn't look like a ChatGPT ने लिखा है, तो आप अगर मुझे मैसेज करोगे तो मैं ज़रूर बताऊंगा 0586861003 पे, दैट्स माई व्हाट्सएप नंबर, जस्ट राइट इन, या नील टेल मी हाउ टू मेक ChatGPT राइट एन ईमेल इन द वे आई राइट एन ईमेल एंड आई विल डेफिनेटली टेल यू। पता है मुझे सीक्रेट है, सीक्रेट क्या है मुझे पता है, आपको बता दूंगा मैं, बट आप तो बताओ कि अगर आपको चाहिए कि नहीं। 0586861003 माई व्हाट्सएप नंबर, मैसेज मी एंड आई विल टेल यू। मीनवाइल आई विल टेक अ लिटिल ब्रेक एंड बी राइट बैक ऑन TSB।

0: insurancemarket.ae. Over 15 years, I have stood by the UAE. I may sound a little fresher now, but I am still the same Alfred you love.
1: This is Talk 100.3.
2: Hello and welcome to TSB Talk Sport and Business. I'm Neil Oja on Talk 100.3. And very, very simply, I'd asked you, कि अगर आप AI यूज़ करते हो तो किस किस चीज़ के लिए यूज़ करते हो, फॉर व्हाट ऑल थिंग्स डू यू यूज़ AI? बिकॉज देयर इज़ अ मैसिव इंटरेस्ट दैट हैज़ कम थ्रू इन AI, एंड एज पर अ रिसर्च बाय KPMG इट सेज दैट UAE इन फैक्ट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट अडॉप्टिंग कंट्रीज एज फार एज AI is concerned, and 97% of UAE's residents say that they use AI. Interesting, isn't it? And फिर बाद में आप में से काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि हाँ भाई, हम AI जो है सबसे ज़्यादा ईमेल लिखने के लिए करते हैं, एंड अगर ईमेल लिखने के लिए AI यूज़ करते हो देन तो फिर भाई पता ही चल जाएगा कि सारे ईमेल्स एक जैसे साउंड करेंगे. योर ईमेल्स विल नॉट साउंड लाइक यू बिकॉज इट्स नॉट यू, बिकॉज द AI हैजंट बीन ट्रेन्ड इनफ टू राइट ईमेल्स लाइक यू. योर टोनैलिटी, योर स्टाइल, सबका अलग अलग तरीका होता है ना ईमेल लिखने का. आप में से कोई होगा जो बस छोटे छोटे ईमेल्स लिखता होगा, दो लाइन के ईमेल, काइंडली चेक द रिपोर्ट, थैंक यू सो मच, अवेटिंग योर रिस्पॉन्स, बाई वेन विल दिस बी डन, एज अ वन लाइन ई मेल. कुछ होंगे जो बराबर है, गुड मॉर्निंग, होप यू आर डूइंग वेल, होप दिस ई मेल फाइंड यू इन द पिंक ऑफ हेल्थ, ऐसे सबसे शुरू करते होंगे, एंड देन फिर बाद में और चार पाँच लाइन के बाद में असली मैटर पर आएंगे. पर अगर आप AI से लिखवा रहे हो तो AI विल राइट अ स्टैंडर्डाइज फॉर्मैट ऑफ ई मेल फॉर एवरी वन, राइट? एंड दैट्स वाई आई टोल्ड यू दैट इफ यू वॉन्ट मी टू टेल यू एंड हेल्प यू विथ कि किस तरह से आप अपने AI को ट्रेन करें टू राइट एन ईमेल जस्ट लाइक यू, ताकि उसको पता चले कि अच्छा, कोई आपका ईमेल पढ़ समझ में आ जाए, अच्छा ये तो इसने लिखा है ईमेल. यानी कि इट शुड नॉट साउंड लाइक एन अ जेनेरिक AI ईमेल. ChatGPT से कॉपी पेस्ट किया हुआ ईमेल नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वो देखते ही ना लोग समझ जाते हैं कि यार ये तो इसकी भाषा है ही नहीं, आपका स्टाइल ही नहीं है वो, तो पता चल जाता है. तो कैसे करने का ये, एंड आप में से काफ़ी सारे लोगों ने मैसेजेस किए टू टेल मी कि हाँ प्लीज़ यार टेल मी हाउ टू राइट दैट काइंड ऑफ ईमेल, हाउ टू स्ट्रक्चर दैट काइंड ऑफ ईमेल, व्हाट इज इट दैट वन हैज़ टू डू टू गेट इट राइट सो दैट द ईमेल्स साउंड लाइक दैट दे आर माई ईमेल्स. तो सबसे पहले, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, बिफोर आस्किंग योर AI, योर ChatGPT और क्लॉड्स टू राइट एन ईमेल, पहले अपने आपने जो खुद लिखे हुए ईमेल है ना, 10-15 ईमेल्स, वो निकाल लो, ठीक है, जो आपने खुद ने लिखे हैं, AI से कॉपी पेस्ट नहीं, खुद ने जो लिखे हैं, ठीक है, वो ईमेल थोड़े से ले लो, एंड देन कॉपी एंड पेस्ट इट ऑन योर AI, ठीक है, एंड देन फिर AI को बोलो. एंड उसमें ना ऐसा होना चाहिए कि पाँच छः ईमेल्स जो आपने अपने बॉसेस को लिखे हैं, सुपीरियर्स को लिखे हैं, मैनेजर्स को लिखे हैं, 5-6 ईमेल्स जो आपने अपने कोवर्कर्स यानी आपके लेवल पे जितने भी हैं उनको लिखे हैं, 5-6 ईमेल्स वो हों जो आपने अपने जूनियर्स को लिखे हैं काम देने के लिए, अच्छा सुन ये काम करो, 3-4 ईमेल वो हों जो क्लाइंट्स को लिखे हैं, क्योंकि सब में आपकी टोन अलग होगी. सोचो आप, जस्ट थिंक ऑफ इट दैट एवरी ईमेल दैट यू राइट द टोनैलिटी वुड बी अ लिटिल डिफरेंट, राइट? व्हेन यू राइटिंग इट टू द टॉप मैनेजमेंट ऑब्वियसली इट बी डिफरेंट एज कम्पेयर टू राइटिंग इट टू समवन दैट यू आर यू नो आस्किंग क्विक वर्क, या किसी आपने एजेंसी को बोला ये करने को, तो भाई चढ़ जाओगे ना उसने अगर आप बराबर से काम नहीं किया तो फिर. तो वो सारे ऐसे 15-20 ईमेल निकालो जो आपने खुद ने लिखे हैं कभी तो भी, बिफोर AI एंड कॉपी पेस्टिंग एंड ऑल ऑफ दैट, राइट? एंड देन फिर अपने ChatGPT, क्लॉड या अपने AI को बोलो कि भाई एनालाइज करो ये ईमेल्स को, आइडेंटिफाई माई राइटिंग स्टाइल, टोन, सेंटेंस स्ट्रक्चर, वोकैबुलरी, माई ग्रीटिंग स्टाइल, माई साइन ऑफ स्टाइल, द लेवल ऑफ फॉर्मैलिटी दैट आई हैव और कॉमन फ्रेजेस दैट आई यूज, एंड देन क्रिएट अ राइटिंग प्रोफाइल बेस्ड ऑन दीज ईमेल्स एंड यूज इट फॉर ऑल फ्यूचर ड्राफ्ट्स. जब आप ये अपने आप अपने AI को बोलोगे ना ऐसा करने को, तो AI समझ जाएगा अच्छा क्या करना है, देन इट विल एनालाइज इट एंड देन इल सेव इट इनके दिमाग में, एंड देन फिर व्हेनेवर यू वांट टू राइट एन ईमेल तो देन फिर लिखो कि भाई ड्राफ्ट एन ईमेल राइटिंग बेस्ड ऑन द स्टाइल दैट इज़ प्रोफाइल्ड बाय यू. मेरा जो प्रोफाइल आपने क्रिएट किया है बेस्ड ऑन माय प्रीवियस ईमेल्स, उसके बेसिस पे ये ईमेल सेट करना है, एंड डू नॉट राइट लाइक जेनेरिक AI और कॉर्पोरेट प्रोफेशनल. मैच माय नेचुरल टोन, सेंटेंस का लेंथ, वोकैबुलरी, लेवल ऑफ फॉर्मैलिटी, एंड कीप द ईमेल कंसाइज एंड कन्वर्जेशनल, ठीक है. एंड उसमें फिर बाद में ईमेल का पर्पस क्या है, किसको लिख रहे हो, हु इज़ दैट पर्सन, इज़ दैट पर्सन अ फ्रेंड और अ कलीग और अ सीनियर एग्जीक्यूटिव, ठीक है, और फिर उसमें क्या क्या लिखना है, और वो लिख के आप प्रॉम्प्ट डाल दो, देखो आपका ईमेल विल साउंड लाइक यू। और अगर फिर भी नहीं हो रहा है ना, थोड़ा बहुत चवन ठनी, तो उसको बोलो कि सुन ये तूने गलत किया है, इसको सही कर दे, वैसा कर दे, एंड रिमेंबर दिस फॉर फ्यूचर यूज़। हमेशा उसको बोलो एंड प्लीज़ रिमेंबर दिस फॉर फ्यूचर यूज़, उसको याद दिलाने का। कभी भी AI भूल जाता है कभी कभी ना, तो याद दिलाने का उसको। ऐसा करोगे ना काम आएगा। और अगर आपको मेरी बात काम आई है, आपको अच्छा लगा मेरी बात, बोला हाँ यार भाई तो जीनियस हो आप, तो एक ऐसा थम्सअप लिख के भेज दो 0586861003, दैट्स माई व्हाट्सएप नंबर। एक थम्सअप से मैं समझ जाऊंगा कि हाँ भाई आपको मेरी बात समझ में आ गई है, एक थम्सअप से मैं समझ जाऊंगा कि आपको मेरी बात हजम हो गई है, यानी कि AI वाली बात जो है वो समझ में आई है। बिकॉज अ लॉट ऑफ अस यूज AI बट नॉट एज प्रोफिशिएंटली एज वी शुड बी, राइट? सो इफ यू हैव लाइक्ड व्हाट आई हैव सेड, यू कैन ऑलवेज सेंड मी अ फ्यू थम्स अप एंड आई विल अंडरस्टैंड। देयर इज अ मैसेज दैट्स कम इन फ्रॉम हसन ने तीन थम्स अप भेजे, तीन बार समझ में आ गया उनको, वेरी नाइस। देयर इज अ मैसेज दैट्स कम इन फ्रॉम आकाश, अनदर वन फ्रॉम साकिब, देयर इज दिस मैसेज दैट्स कम इन फ्रॉम हसनैन। क्या बात है, सब ने थम्स अप भेजे, वेरी नाइस यार, आई लाइक इट, आई लाइक दिस। रेडियो का यही तो खूबसूरती है, यू नो, कि when यू डू समथिंग there's an instant response that comes in, there's a number that ends with 5151, उन्होंने थैंक्स लिख के भेजा है। थैंक यू सो मच फॉर योर थैंक्स एक्स्ट्रा एफर्ट के लिए। 0586861003, आई एम नील ओझा, यू कैन ऑलवेज मैसेज मी ऑन दिस नंबर, इट्स माई व्हाट्सएप नंबर। एंड टुडे ऑब्वियसली बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट AI, अगर AI से लग के कोई भी सवाल है आपके, पूछो, आई ट्राई एंड आंसर, ठीक है ना? Right here on TSB.
3: The Journal on TSB. The latest share market and stock market news and updates on Talk 100.3.
2: Hello and welcome to TSB, Talk Sport and Business. I'm Neil Oja. We'll have a check on what is happening on financial market right now. We'll go to the Asian markets. Nikkei 225 is up by 2.5%, SSE up by 0.22%, HSI down 1.56%, and Sensex is down by 0.41%. One of the reasons why it is down is the Nifty IT index has plunged by 5.5%. Major companies like Tata Consultancy Services, that is TCS, fell more than 8% following reports questioning AI growth targets and aggressive profit booking after a recent tally. Also, surge in oil prices has done this. So, with the weakening rupee, Sensex and Nifty 50 both are down in the day's trade. Also, alongside it is the crypto market, which has grown a bit from yesterday. Yesterday was a massive dip in Bitcoin. Right now, trading at 66,819. Ethereum at 1,867. XRP on 1.23 and Dogecoin on 0.938. Keeping an eye on the financial world, I'm Neil Oja.
3: Talk 100.3 Traffic.
2: ट्रैफिक का हाल फिर अबू धाबी, एब्सोल्युटली स्मूथ, कहीं पे कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। बट अगर आप दुबई में हो तो आपको ट्रैफिक मिलेगा, थोड़ा सा ऑन शेख जायद रोड नियर बिजनेस बे गोइंग टुवर्ड्स द ट्रेड सेंटर राउंड अबाउट, आगे जाके ट्रैफिक आपको मिलेगा। E11 पे कमिंग इन फ्रॉम सिटी सेंटर एरिया गोइंग ऑल द वे टुवर्ड्स अल ताउन, 311 पे ट्रैफिक है मर्डिफ से जाते हुए टुवर्ड्स इंडस्ट्रियल एरिया इन शारजा। E44 अलखेल रोड पे ट्रैफिक है अलखूज के पास, इफ यू आर कमिंग इन फ्रॉम बिजनेस बे टुवर्ड्स अलखूज एंड अलखूज से जाते हुए टुवर्ड्स बिजनेस बे, दोनों तरफे जो है ट्रैफिक आपको मिलने वाला है। इसके अलावा अगर आपको कहीं ट्रैफिक नजर आ रहा है तो यू डेफिनेटली डू हैव टू क्विकली पिक अप योर फोन्स एंड लेट मी नो ऑन 0586861003, या तो फिर कॉल कीजिए ऑन 800-81003 टू लेट अस नो कि ट्रैफिक कहां है। मैं हूं नील एंड दिस इज TSB, टॉक स्पोर्ट एंड बिजनेस ऑन टॉक 100.3, पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल नेटवर्क।
3: दिस इज टॉक 100.3 TSB, स्पोर्ट्स हेडलाइंस, टॉक 100.3।
4: BBC Premier League update from the home of Premier League football.
5: Hello, I'm Conor O'Grady at the BBC Sports Centre. The former Newcastle United and Manchester City manager Kevin Keegan has revealed for the years the most advanced form of cancer. His family announced his diagnosis in January. Keegan now says, though, that his cancer has spread to other parts of his body. The former Newcastle United goalkeeper Shaka Hislop, who has undergone treatment for an aggressive form of prostate cancer himself, gave this reaction to the news.
6: It's been difficult, given everything that Kevin Keegan continues to mean to me. He signed me as a Premier League player back in 1995. And in truth, epitomised what it meant to be a great football player, not just a great manager, but a great human being. I think he was an example of all that's good in this game. And now hearing this diagnosis, again, difficult to take. Cancer respects no one. We know that. And to see it kind of play out in the way that it has over the last few hours has been sobering.
7: How do you feel he'll be approaching this difficult moment that he's in?
6: As dire a diagnosis as it may be, he continues to find humor in it. He continues to live life fully, as he always has done. Takes on big challenges with a smile and a sense of humor. And every single time he's won those challenges, and you want to back him again this time around.
5: That's Shaka Hislop speaking to the BBC's Claire McDonnell. Elsewhere, Atletico Madrid, Barcelona and Real Madrid are being linked with a move for Chelsea's Marc Cucurella. For more football news from the BBC, go to bbc.com/football.
4: BBC Premier League Update from the home of Premier League football.
1: Talk 100.3.
2: Hello and welcome to TSB Talk Sport and Business. I'm Neil Oja on Talk 100.3. We've been talking about AI. We've been talking in detail about AI. But what about the human side of it? Where does one understand the difference between kitna AI ko use karna hai and kitna usse dur rehna hai? You know, main Pranav se baat kar raha tha bahar, and we got into trying to understand the financial aspect of using AI, right? कि अगर आप सोच रहे हो कि मैं invest करूँगा, मैंने आपको पहले भी कहा था ना कि अपनी health advice के लिए AI को use नहीं करना चाहिए. अपने personal relationships के लिए, interpersonal relationships के लिए AI को use नहीं करना चाहिए, because that is where the human emotions come into play. Also कहीं पर ऐसा है, एक fine line है about not using AI for taking financial punts. As in investments के लिए, trading के लिए, especially investments चलो ठीक है, but trading के लिए, ठीक है? And that is where a fantastic debate comes about. I would like to invite Pranav on the conversation, because he did tell me कि he tried doing this and he found something really very interesting. So Pranav, what was it? What did you try doing with AI and trying to look at some of the stocks?
8: Well, again, coming to the prompts and the questions that are around it, and again, a financial decision like this obviously needs to be taken in a sensible manner, comparing the risk to reward ratio and to everyone's sensibilities. So hum finance experts to bilkul nahi, from my end I can say that I'm not a finance expert, but certainly one thing that it did help me with is try and understand what the trends are, what is something that people these days are looking towards in, say, the US market. So with ChatGPT and OpenAI, or rather Claude for that matter, what I was able to try and gather information was to what are some of the stocks that are, you know, going upwards, what to buy, what to look forward to, whether you hold or you sell, what are some of the big investors like chahe wo Jackson Hong ho gaya from Nvidia, whether it's Bill Gates, what is Warren Buffett doing, for example, what are some of the politicians in the US doing, because wo khud apne markets mein invest karte hain sometimes, you know, again, keeping things like insider trading and all that aside, you know, just in regular stuff, Middle East ke jo situation hai, uske hisab se what could we be looking at. There was a trip for Donald Trump to China, and a lot of the topic or a lot of the talking points around that was to do with semiconductors, was rare earth minerals. So you keep an eye around, you know, what companies might react, or, you know, what's, you spoke about semiconductor ETFs, for example, and I think that is the future, semiconductors. And for anyone who still hasn't invested in it, please do your research, read up on it, and do look at semiconductor options. Look for, you know, the ETFs if you want to go for individual stocks in itself.
2: Wo sab to theek hai, wo sab theek hai. Main AI application ki baat kar raha hu, because what you did
8: and
2: was,
8: and what AI helps you is exactly keep track of it. You know, for example, from a very outside perspective, a Trump going to China might not be the biggest of interest for us, you know, from an outside zone. But when you know that you have an AI tool, for example, at hand, and if you want to invest in it, jo bhi situation hai duniya ke kone mein, you can feed that into OpenAI and say, okay, how can I make money out of it?
2: Okay.
8: It's a very oversimplified way of thinking.
2: It is extremely oversimplified. मैं थोड़ा सा उसको बताता हूँ कि प्रणव ने जो बात करी है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात करी है कि how do you use all the information that is around us to make us understand ke how will this impact your financial investments or a particular stock that you're following. ठीक है, अब आपका जो भी फाइनेंशियल जर्नी है, सबकी अलग अलग फाइनेंशियल जर्नी होती है, एंड ये हम सबसे पहले कहते हैं कि हम यहाँ पर आपको फाइनेंस में एजुकेट करते हैं, फाइनेंस में एडवाइस नहीं करते हैं. दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस पीस कि आप इस स्टॉक में पैसे डालो, उस स्टॉक में डालो, ऐसा कुछ नहीं हम बोलते हैं. हम आपको सिर्फ बताते हैं कि क्या किस तरह से आप इन अवेलेबल टूल्स को आप यूज कर सकते हो. दीज methods, these tools are primarily for education purposes only. ठीक है, कि अभी situation क्या है, current scenario क्या है, why is crypto trailing like this, you know 66,000 पे bitcoin चल रहा है, क्यों इतना कम पे चल रहा है, एक time पे ऐसा लग रहा था कि by the end of the year 125,000 पहुंच जाएगा,
8: right.
2: ठीक है, पर फिर बाद में क्या हुआ, उसके बाद में अभी ऐसा क्यों चल रहा है, that is all एक फियर एंड ग्रीड इंडेक्स होता है. ठीक है, कि लोगों को क्या लग रहा है कि भाई कहाँ पे किस चीज़ का डर है, किस चीज़ का ग्रीड है, और इन सब के आसपास जो है न्यूज़ जो आपकी आपको मिलती है, आपके कानों तक पहुँचती है, उन सब न्यूज़ का इफेक्ट होता है. ठीक है, प्रीकर्सर टू एनी इवेंट दैट इज हैपनिंग, द पोस्ट मैथ ऑफ एनी इवेंट दैट हैज हैपेंड, वो सब की वजह से सारे स्टॉक प्राइजेस ऊपर नीचे मूव होते हैं, चाहे फिर वो गोल्ड हो, ऑयल हो, कमोडिटीज हो, आपके इक्विटी हो, US मार्केट्स हैं, यूरोपियन मार्केट्स हैं, ईस्टर्न मार्केट्स हैं, UAE की मार्केट्स हैं, ये सब का इंफॉर्मेशन आप कितना रख पाओगे.
8: या
2: इट्स वेरी डिफिकल्ट, very very difficult.
8: How will you keep track?
2: You cannot.
8: And in terms of remembering absolutely. The track of events
2: true.
8: That have already, you know, taken over, that have passed in the last couple true. Of days,
2: unless and until you know you are a part of that cycle where you are actually doing it for a living.
8: Yeah,
2: theek hai na, ki agar samjho मैं क्रिकेट फॉलो करता हूँ तो मुझे शायद पता होगा कि आईपीएल में क्या चल रहा है.
8: बिल्कुल
2: ठीक है, बट अगर मैं एक बस क्रिकेट थोड़ा सा देख लेता हूँ, जैसे फुटबॉल में थोड़ा सा देख लेता हूँ, तो आई नो व्हाट इज हैपनिंग, बट आई डोंट नो इन डिटेल एज मच डिटेल कि क्या हो रहा है. ठीक है ना, आई वाज वाचिंग एन एपिसोड यस्टरडे ऑफ दिस शो कॉल्ड सूट्स. इट्स अ प्रोबब्ली थर्ड रीरन फॉर मी बिकॉज आई लव दैट शो.
8: थ्री रीरन्स?
2: या थर्ड रीरन राइट नाउ. तो उसमें एक एपिसोड है जहां पर हार्वी स्पेक्टर इज मीटिंग समवन हु इज इनटू अ ट्रेडिंग बिजनेस फॉर इयर्स, यू नो, वेरी वेरी सीनियर गाय, और उसको बोलता है कि यू आर यू नो द SEC, the Securities and Equities Commodities organization is coming against you because they sense that you're doing insider trading.
8: Right.
2: So, बोलता है कि मैं insider trading नहीं करता हूँ, मैं gut feeling के हिसाब से trade करता हूँ. I keep an eye on everything that's happening. So, like, how is that possible? तो Harvey Specter जो lawyer है, उनको वो कहता है, pick up that newspaper there and pick any stock and tell me. तो उसको एक stock का नाम बताता है, ठीक है, फलाना stock. वो बताता है कि इट्स करंटली प्राइस्ड एट दिस, उसका पी ई रेशियो ये है, इट इज डूइंग दिस, इट इज डूइंग वेल बिकॉज ऑफ दिस, उसका लोएस्ट इतना था, हाईएस्ट इतना था, डे इतने पे शुरू हुआ, डे इतने पे क्लोज हुआ था कल, आज का ओपनिंग इतना है, करंटली ट्रेडिंग एट दिस, एंड डिस्पाइट ऑल द थिंग्स दैट लुक पॉजिटिव, दिस स्टॉक विल नॉट डू वेल बिकॉज उसका सीईओ जो है इज नॉट इंटरेस्टेड इन ग्रोइंग द कंपनी.
8: राइट,
2: ठीक है, रैंडम स्टॉक का बताता है. आई मीन ऑब्वियसली दिस इज ऑल स्क्रिप्टेड, इट्स अ शो, बट इट जस्ट टेल्स यू दैट समवन हुज लिविंग दैट लाइफ विल नो द इनसाइट्स ऑफ.
8: बिल्कुल,
2: बट यू एंड आई बिकॉज हमारे काम फुल टाइम जॉब कहीं और है, हम और कुछ काम करते हैं, तो हमारा उतना इन्फॉर्मेशन हम उतना कंज्यूम ही नहीं कर पाते हैं. ठीक है, और अगर कंज्यूम करते हैं तो उसको हम एनालाइज नहीं कर पाते हैं. दैट इज वेयर ए आई कम्स इन टू प्ले, वेर यू एक्चुअली टेल ए आई कि आई एम लुकिंग एट दिस पर्टिकुलर स्टॉक, ठीक है, एंड मुझे इस स्टॉक के बारे में इंफॉर्मेशन बताओ बेस्ड ऑन द करंट जियोपॉलिटिकल सिनेरियो, बेस्ड ऑन ट्रंप्स विजिट टू चाइना, बेस्ड ऑन यू नो व्हाट पोटेंशियली कुड बी फेड्स कॉल ऑन इंटरेस्ट रेट्स ड्रॉपिंग और नॉट ड्रॉपिंग, हाउ विल दिस वर्क, क्वार्टरली अर्निंग्स आए हैं, क्वार्टर अर्निंग रिपोर्ट्स के बेसिस पे क्या बन सकता है, क्या हो सकता है. तो आपको एआई जो है ना वो सबको एनालाइज करके एक एनालिस्ट की तरह आपको बताएगा कि दिस इज व्हाट इट इज, बट इवन एआई विल नॉट टेल यू टू बाय और नॉट टू बाय. आपको कॉल एंड पुट जो है वो आपको नहीं बताएगा, क्योंकि अगर वो बताता भी है तो भी आई थिंक यू शुड टेक योर रिस्क्स ऑन योर बेसिस एंड नॉट बेस्ड ऑन एआई, क्योंकि कहीं पर देयर इज अ थियरी के क्वांट जो है, दैट इज रोबोटिक्स जो है, एआईज जो है, कैन डू बेटर ट्रेडिंग एंड एवरीथिंग एज कंपेयर टू ह्यूमंस बिकॉज उनमें इमोशंस नहीं होते हैं, बट एट द सेम टाइम हैव यू ट्रेन्ड योर एआई इनफ टू डू इट सो वेल, एंड द आंसर इज नो. Because you don't do it every single day. आपको उसको उतना ट्रेन करना पड़ेगा ताकि वो AI is completely in sync with the markets with that particular stock, with that particular category. And if that is done, then yes. But otherwise, we always think ki kahin par jaakar ye jo hai aapko galat rasta na dikha de. Isliye wo information sirf understand karo, absorb karo, use back test karo. And then if you want to trade purely based on your risk appetite, you should trade.
8: And doing something like this, certainly it can lead to two ways. For example, someone finds it so interesting that the curiosity factor gets multifold for them and it becomes a regular practice. Okay, I see it for about half an hour or 40 minutes today. I come back and then I check maybe say 40 minutes more tomorrow. And it becomes a recurring sort of a... It becomes part of your daily duty, right? And that's how your curiosity builds. And as you feed more and more to the language module, and that's how you train it as well. And then it starts reciprocating more information, more detailed, you know, the subject matter is a bit more vast. It starts to understand what your risk assessment is as well. Like, for example, if there was a situation where I was looking at some semiconductor options, smaller businesses, and I said, look, I've only got $100 right now. Right? And what do I do? So with $100, it'll tell me go for the safest option, which is say 50-30-20 breakdown. For example, it'll give me three options, say 50-30-20. And then I'll say, no, I'm happy to push it more. Then it'll say, do you want to do 50-50? And then it'll probably suggest 50-50. And then I'd be like, no, but you know, I'm not confident in one of the stocks, but I want to go bullish on the two other. Then it probably will suggest, so do 50, 40 and 10, you know, things like that. So that's how you train your module. That's how you start to, you know, assess how you want to approach your own investment portfolio. And the other extreme of it is either it becomes too much information on the screen for you that you cannot absorb it, that you just think, you know what, this is not for me, let me just be, you know. So there's two extremes that people
2: absolutely
8: can
2: go. And see, you know, irrespective of whichever, you know, method you're using, you're trying to use it for information, for knowledge, for understanding, for trying to just brainstorm with someone who understands this based on the information that it holds. You also need to understand that your LLM, your OpenAI, ChatGPT, Claude, jo bhi hai, theek hai na? At the core of it, they are machines, right?
8: Yeah.
2: And they're not trained to be masters. They're trained to be, more often than not, yes, boss. So, agar aap usko bologe, like you said, that you said, I'm not okay with going 50, 30, 20. I want to go 50-50 or probably bullish on this. To wo bol dega ki, haan, okay, no problem at all.
8: Yes, it'll tell you whatever you do is the best thing.
2: Exactly.
8: That's exactly what it is.
2: So you need to understand ki, boss, that could also be wrong. Because just because you feel so, does not mean that ChatGPT or Claude or whatever will say the same thing. So you also need to develop your AI in certain way where it actually is brainstorming with you, giving you, ki nahi bhai, तेरी मर्जी के हिसाब से नहीं चलेगा यहाँ पे जो स्टेटस है उसके हिसाब से ऐसा करना पड़ेगा.
8: Can I slightly sidetrack from stocks?
2: हाँ बोलो.
8: Okay, there's another story, and this is what AI does so well into just maintaining your peace of mind, your subconscious mind को थोड़ा ठंडा रखने के लिए. It was an issue with a car that I developed a couple of months ago. And I thought, you know, this is absolutely going to sit on top of my head, needs a complete full rework on it. Probably I'm looking at a 20-40,000 dirham costing, whatever. I start feeding questions and my own doubts into ChatGPT, and then it starts breaking things down for me, saying that it's completely okay. This was bound to happen after a certain time for your car. You took the right action. It's good you didn't drive it further. You know, it breaks it down into making you feel like you've taken all the right steps for now, and that there are different variations for how much your repairs might cost. So don't jump the gun and think extreme. So aise breakdown karke na, you know what? We've gone through all these steps, but just be prepared that you might pay 10,000, you might pay 20,000, you might even end up paying 5,000. But the fact that you identified it and you're sitting in this juncture where you can think about all these options, that in itself is a good thing.
2: Which is a good thing. I mean, it

0: the ways around using ChatGPT for his curiosity, so that now he speaks to ChatGPT, is getting answers. He's a food technologist, or rather professionally was a food technologist, now he's retired. So he's very curious about, you know, about everything. So research karte hain, dhoondte hain cheezein, you know, khane ki cheezon mein, fats ke bare mein, ye wo. To wo research jo kar rahe the, theek hai, to unhone ja ke dekha, phir kafi sari cheezein unhe pata chali, then he would call me and tell me, oh listen, I was checking this on ChatGPT, now this, and you're right, you know, ChatGPT has better answers as compared to those random people saying random things on YouTube. So now YouTubers have become random people for him. I don't know if he watches my YouTube videos, but for him now, YouTubers are random. And I'm glad, because 97% of YouTubers are random. I'm not kidding. I'm seriously telling you, 97%. Because, yeah, YouTube pe kya chalta hai? Shock chalta hai, sensationalization chalta hai. Aur jab tak aap ye nahi karoge, tab tak aapka video nahi chalta hai. Theek hai na? So, what happens is, basically, when you want to sensationalize anything, you will lie through your nose, na? Aap kahan sach bologe? Sach bolne pe thodi kaam hota hai. Jab main mere previews kar raha tha for IPL, main koi drama nahi, koi tanta nahi, main seedha batata tha, kya suno, ye match mein ye hai, aisa ye players hai, ye player ke jaise ye ho sakta hai, ye pitch ke jaise aisa ho sakta hai. This could be potentially happening. But, kuch log hain jo drama karte hain. I am telling you, aisa hoga. Meri baat hai, ye aisa hoga. वो ड्रामा जब तक नहीं करोगे तब तक नहीं चलता, बट बॉस हम ड्रामा नहीं करते, हम फैक्ट्स बताते हैं ना. सो दैट इज व्हाट इट इज. बट चैट जीपीटी या जो भी है एआई जो भी है, वो बेसिकली आपको डेफिनेटली एक सपोर्ट करता है, एक हेल्प करता है टू बेटर योर लैंग्वेज स्किल्स. हम भाई देसी लोग हैं, अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़े तो क्या हुआ, हमारी अंग्रेजी थोड़ी यू नो ऑक्सफर्ड डिक्शनरी जैसी है. तो अब तो खैर अभी ये तो उन अंग्रेजों की भी नहीं है, उनकी भी अंग्रेजी देखो तो वाह वो एक्सेंट में दो चीज़ बोल देंगे आपको लगता है भाई इनको अंग्रेजी आती है. उनसे अच्छा ग्रामर हमारा होता है, बाय द वे, आई एम नॉट किडिंग. ठीक है ना, काफ़ी सारे यू नो इनसे बात कर लो, कभी आपको समझ में आ जाएगा कि आपका ग्रामर, आपका प्रोनंसिएशन उनसे बेहतर होता है. और नकाश ने भेजा है AI and LinkedIn, ये बहुत बढ़िया भेजा है, मस्त एक मीम चल रहा था, वो भाई ने उठा के टाइमिंग से भेजा है, गब्बर सिंह वाला. गब्बर सिंह डकैत हेड हंटर एंड कल्चरल एनफोर्सर, ये रामगढ़ गांव का, ये उनका LinkedIn प्रोफाइल है गब्बर सिंह का शोले का. पर जब उन्होंने डाल दिया भाई ChatGPT पे, उसके बाद में AI की मदद से क्या हो गया गब्बर सिंह, 50,000 प्लस कैप्टिव फॉलोअर्स, चीफ टैलेंट एक्विजिशन स्पेशलिस्ट, चंबल्स 40 under 40 मोस्ट वॉन्टेड, alternative motivation technique practitioner, compelling negotiation leader, advocate of 70-hour work or else initiative, top outlaw voice, Thakur Society Group, Chambal School of Business, Ramgarh, India. ये तो भाई एकदम बढ़िया ले है, absolutely ऐसा ही होता है. आप देख लो लोगों के आजकल LinkedIn, ऐसे लगते हैं कि भाई पता नहीं किसने लिख के भेजा है. उसके पहले LinkedIn पे लिखते थे sales manager at so and so, अभी देखो तो revenue accelerator, chief revenue पोर्टर, यू नो फाइव स्टार रेवेन्यू, ये सब हो चुका है ऐसा. बट आई कैन टेल यू वन थिंग, AI को अच्छे से यूज़ करोगे तो अच्छी चीज़ें होती हैं. आप कितना AI यूज़ करते हो अपनी लाइफ में, कौन सी चीज़ों के लिए AI को यूज़ करते हो? लेट्स हैव अ कॉन्वर्सेशन ऑन दैट ऑन 0586861003. दैट्स माई व्हाट्सएप नंबर, 0586861003. क्या आप भी AI से कुछ इंस्पायर होके आपने कुछ वीडियो बना लिए, या आपने यू नो ईमेल लिखना चालू कर दिया, या मैसेजेस के लिए यूज़ करते हो, या यू नो पिक्चर्स के लिए यूज़ करते हो, या बस ऐसे ही यू नो अच्छे कंटेंट के लिए यूज़ करते हो, या कुछ क्यूरियोसिटी है जैसे मेरे डैड को है, तो अपनी क्यूरियोसिटी को सैटिएट करने के लिए जो है आप सेशिएट करने के लिए आप AI को यूज़ करते हो, 0586861003. बिकॉज you know there will always be conversations about AI taking over you know our jobs and whatever, but no, if you ride the wave right, then there's never a problem. It's like, remember jab computers aaye the, sabko aisa laga tha ki oh jab computers aayenge to sabki naukriyan chali jayengi, wo jo haath se ledger banate hain, kitabon mein jo likhte hain, wo kya karenge kya nahi karenge. Nahi, सबने कंप्यूटर सीख लिए, सबको यूज़ करना आ गया, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट तो बेसिक चीज़ें हो गई, ये स्कूल में सिखाने लग गए, और उसकी वजह से क्या हुआ, नाउ नो वन लॉस्ट देयर जॉब, एवरीवन लर्न्ड हाउ टू यूज़ इट. एंड दिस इज द सेम थिंग विद AI. AI इज़ नॉट अबाउट कोडिंग, इट इज़ अबाउट हैविंग कॉन्वर्जेशन विद अ मशीन दैट अंडरस्टैंड्स वॉट यू आर सेइंग एंड गिव्स यू वॉट यू वॉन्ट, राइट. Obviously, there are deeper sides to it. आप उसमें app भी create कर सकते हो बिना coding के, ये सारी चीज़ें. बट अगर आपको ज़रूरत नहीं तो फिर ठीक है, बट आपको जो ज़रूरत है, आपके काम में जिस चीज़ की ज़रूरत है, उस चीज़ के लिए क्या आप AI यूज़ करते हो? एंड अगर करते हो तो बताओ ऑन 0586861003 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यू कैन ऑलवेज व्हाट्सएप मी. एंड आई एम श्योर कि नकाश जो हमारे बहुत रेगुलर सुनने वाले हैं और बड़े मीमर हैं, बहुत बड़े मीमर हैं, इज़ अ वेरी वेरी यू नो अमेजिंग मीमर, वो भाई मुझे लगता है कि AI से दो कदम आगे ही हैं. ये AI के मीम बनाते हैं, AI लोग जो हैं AI को यूज़ करके मीम बनाते हैं. नकाश जो है वो AI के ऊपर मीम बनाते हैं, वो अलग लेवल पे हैं. आई एम श्योर ये भी यूज़ करते होंगे, बट इट्स अ गुड थिंग. एंड आई इन नो वे आई से दैट यूजिंग AI इज़ बैड. I am someone who will always say that, you know, if you use AI in the right way, it'll always help you. It'll always give you a good direction, a good way in where you can actually move forward, learn things faster, be more productive, yaar. Agar ek cheez karne ko aapko agar ek ghanta lagta hai, wahi agar aap AI ki madad se karoge, to shayad 20 minute mein ho jayegi. Agar aap उसे यू नो टाइमलाइंस अगर आप देखते हो तो आई एम श्योर दैट इट विल बिकम अ लॉट फास्टर. 0586861003 देयर इज अ मैसेज दैट्स कम इन फ्रॉम निशांत. एंड निशांत सेज दैट आई यूज AI इन माय डेली वर्क. इंटरेस्टिंग, व्हाट इज योर डेली वर्क? आई वांट टू नो निशांत, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड दैट यू नो हाउ आर यू यूजिंग इट. एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन यूजिंग AI, इट्स इन फैक्ट गुड दैट यू आर यूजिंग AI. देयर इज अनदर मैसेज कम इन फ्रॉम दीपक. दीपक कहते हैं मैं सीख रहा हूँ AI यूज करना. गुड, वेरी नाइस. आई मीन इट्स ऑलवेज गुड टू लर्न यू नो न्यूअर थिंग्स. एंड इट इज इन एवर इवॉल्विंग इंडस्ट्री मेरे भाई. जिस तरह से AI के कॉम्पोनेंट्स जितने भी हैं, चाहे सेमी कंडक्टर चिप्स हों, चाहे डेटा स्टोरेज हो, चाहे यू नो टेक्नोलॉजी स्पेस हो, क्लाउड स्पेस हो, उन सब में उन सब के स्टॉक्स बढ़ रहे हैं. क्यों बढ़ रहे हैं? बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव यूज ऑफ AI. कल हम संदीप से बात कर रहे थे, जादवानी, संदीप जादवानी जो हमारे फाइनेंस एक्सपर्ट हैं, उन्होंने भी यही कहा ना कि वाई आर ऑल ऑफ दीज यू नो AI डोमेन स्टॉक्स इंक्रीजिंग. इनके स्टॉक्स के प्राइसेस इंक्रीज क्यों हो रहे हैं? कि नॉट जस्ट बिकॉज के यू नो बढ़ रहा है काम, बट बिकॉज लोग भी तो यूज़ कर रहे हैं ना. सेमीकंडक्टर चिप्स जो हैं, जो हमेशा AI के जो प्रोसेसर्स हैं उसमें यूज़ होते हैं, तो उनका जो रेट्स आप देखो सेमीकंडक्टर्स की जितनी भी कंपनीज हैं, उनके ETFs हैं, उनके रेट्स बढ़ रहे हैं, उनके स्टॉक के प्राइसेस बढ़ रहे हैं. ठीक है ना. जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं, उनके जो क्लाउड स्टोरेज हैं, जहाँ पर, क्योंकि देखो आप अगर ChatGPT से बात करते हो, आफ्टर सम टाइम ChatGPT अंडरस्टैंड्स यू, राइट? इट टॉक्स टू यू बिकॉज इट नोज यू. वाई? Because it's storing all that conversation that you're having with it, right? In some place, unki memory mein stored hota hai. Ab ye storage kahan hai? उसका भी तो भाई लोकेशन बड़ा करना पड़ेगा उनको, अपने जो क्या कहते हैं सर्वर्स हैं, सर्वर्स को बड़ा करता रहना पड़ेगा. वो सर्वर्स को बड़ा करोगे तो मतलब यानी कि सर्वर्स के लिए जो जो रिक्वायरमेंट उन सब की ज़रूरत पड़ेगी. जितनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी उतने ज़्यादा उनके स्टॉक्स के प्राइसेस ऊपर जाएंगे. सिंपल एज दैट, राइट? सो इफ यू यूजिंग AI, which I think you should, let me know on what platforms do you use, kis cheez ke liye kya use karte ho. 0586861003, that is my number. There's a message that's come in from Swati. Swati says that I am not an active user of AI, but I do learn newer concepts from it. Very nice. There you go, the creative side of it, the curious side of it. के कुछ नहीं आता है तो फिर पूछो उसको, वो आपको बताएगा, simplify करके बताएगा. You know, there are so many prompts that you can use to actually simplify things for yourself if you want to learn something new. And that definitely helps. But one thing I will always tell you, जो मैं पहले भी कहता था Google के बारे में, वही चीज़ मैं कहूँगा AI के बारे में. अपने medical conditions या medical health advice के लिए कभी भी AI को या Google को ना पूछें. They will have detailed answers, but no, I think you should go to a medical practitioner to get it checked. Fred ka ek message aaya. Fred ne mujhe lamba choda voice note bheja hai. Fred, I will have to listen to it only after I, you know, finish talking, because otherwise I won't be able to hear you. So once I finish my conversation, I can definitely listen to your voice note. Otherwise, if you can type, that'll be really great. So I can read it while I am actually talking. You know, I can do a bit of multitasking, and that is primarily about, you know, reading about whatever you're writing, but I can't listen to your voice note while I'm talking. Kyunki wo thoda challenging ho jayega na, voice note sunte sunte baat karna. There's a message that's coming from Nakash. He says, I use it for making presentations, take ideas for modern and traditional sales, history references, and most importantly, meme templates. There you go. Very good. See, presentations. It's a very good tool if you are in, you know, making presentations. Bahut aasan ho jata hai presentation banana. Fatafat se presentation ho jati hai. Aapko time nahi lagta. Pehle, you know, mujhe yaad hai, hum jab college mein hua karte the, when I was studying mass comm, तो वी हैड टू डू प्रेजेंटेशंस इन ऑल, लाइक हर सब्जेक्ट में प्रेजेंटेशंस होती थी, ठीक है ना. तो हर प्रेजेंटेशन के लिए एक डेजिग्नेटेड बंदा होता था जो टेम्पलेट बनाएगा, ठीक है ना. वो ऐसा चार पांच टेम्पलेट डिज़ाइन करता था, फिर वो बंदा टेम्पलेट में हम लोग सब अपनी टिप्पणियां देते थे कि नहीं यार ये टेम्पलेट सही नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है. और फिर बाद में वो बेचारा मेहनत कर करके टेम्पलेट अप्रूव होती थी हमारी इंटरनली, हम जो ग्रुप होता था जिसमें काम करते थे. तो एक, जैसे मैंने कहा ना, पाँच छः लोगों का अगर ग्रुप है तो एक बंदा डेडिकेटेड टेम्पलेट डिज़ाइनर होता था, दूसरा होता जो प्रेजेंटेशन बनाता था, तीसरा होता था जो बकायदा प्रेजेंटेशन में क्या क्या चीज़ें डालनी है वो यू नो लिख के रखता था, यानी कि एक वर्ड इस पे क्या कहते हैं वर्ड के एक पेज पे सब लिख के रखता था. और जो प्रेजेंटेशन बना रहा है वो टेक्निकली उसमें से कॉपी पेस्ट करके उसका स्लाइड वाइड बनाएगा, एनिमेशन डालेगा, ये वो. और फिर एक दो बंदे होते हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जाओ भाई तुम प्रेजेंट करो, तो वैसा होता था. अब क्या हो गया, ये सारी चीज़ें ना AI के थ्रू फटाक से हो जाती है, बुक्स इजीली मिल जाती हैं AI से, बिल्कुल. बुक्स भी इनफैक्ट अगर आपको टाइम नहीं है पूरी बुक पढ़ने का, कोई चीज़ है सेल्फ लर्निंग बुक है या कुछ ऐसा है, सेल्फ हेल्प बुक है, आपको टाइम नहीं है पूरी बुक पढ़ने का, तो आप AI को कहो, अच्छे से प्रॉम्प्ट करके बोलो कि भाई मुझे, मेरे पास टाइम नहीं है, ये जो बुक है इस ऑथर की, मुझे इसको ऐसा समझा कि भाई मैं 5 मिनट में ये पढ़ लूँ तो समझ जाऊँ कि ये बुक में क्या लिखा है और उसको मैं इंप्लीमेंट अपनी लाइफ में कैसे करूँ. क्योंकि पढ़ना एक चीज़ होती है, बुक में जो लिखा है उसे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने का अलग चीज़ होती है. सो देन यू नो इट्स वेरी वेरी नाइस टू यू नो यूज़ दैट लिटिल थिंग दैट AI डज फॉर यू. इट ऑब्वियसली बिकॉज देर इज सो मच डेटा दैट इट हैज़, इट विल एक्चुअली टेल यू दैट ओके दिस 200-page बुक का पूरा जो सार है संक्षिप्त में वो ये है. This is what the book says and these are the pointers and if you have to implement it in your life then do A, B, C, D, E, F, G. Bang! आपको 5-6-7 घंटे बैठ के वो बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 10 मिनट के अंदर आपने वो पढ़ लिया. और फिर अगर आपको चाहिए कि भाई उसका एक मेरे को पोस्टर बना के अपने दीवार पे लगाना है तो भाई AI को बोल दो, सुन भाई ये जो हेडलाइंस है इसकी एक पोस्टर बना दे मेरे लिए फटाक से ताकि मैं अपने दीवार पे लगा दूँ, वो भी बना देगा. अब ये बोलोगे मेरा फेवरेट पॉइंट फेवरेट फॉन्ट जो है वो एरियल या टाइम्स न्यू रोमन है तो टाइम्स न्यू रोमन भी आपको फॉन्ट में डाल के बना के दे देगा सब कुछ. आपको सिर्फ बोलना है. ये जो है ना बेसिकली अलादीन का वो चिराग है जिसको आपने घिस के जब जिन निकलता है ना बाहर उसको बताना है कि क्या करना है और वो आपके लिए कर देगा. और इट्स नॉट लिमिटेड टू 3 wishes. हाँ प्रॉब्ली यू नो 5-7 things इन अ डे, क्योंकि फिर वो बोलेगा अच्छा सुनो आज का काम इतना हो गया, अब जो है ना मैं एक लोअर वर्जन पे चले जाऊंगा, अब मैं आराम आराम से काम करूंगा, स्लोली काम करूंगा. और फिर उसके बाद बोलेगा चलो ठीक है आज का कोटा खत्म, आज से ज़्यादा इससे नहीं होगा, नहीं तो फिर पैसे वाला काम ले लो, यानी कि प्रो वर्जन ले लो, प्लस वर्जन ले लो, जो भी है. सो वॉट एवर इज फ्री यूटिलाइज इट. वाई डोंट यू वॉन्ट टू यूटिलाइज इट, है ना. सो मेक यूज ऑफ AI एंड डू लेट मी नो what is the things, what are the things that you use AI for. 0586861003. Dear sir, very nice conversation. I'm trying to learn. I want to sell my shop. Kaise karun? Achha, inki ek dukaan hai. Inko dukaan bechni hai. Dukaan hi bechni hai aapko. Ki dukaan mein jo saman hai, wo bechna hai. है मुझे ये ज़रूर बताइए ताकि फिर मैं आपको थोड़ा सा जितना मुझे आता है उस हिसाब से मैं आपको बता पाऊंगा. बट हाँ AI लर्न कीजिए, आपकी दुकान का सामान भी बिक जाएगा और अगर दुकान बेचनी तो दुकान फिर बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दुकान फिर दुकान में सामान जो है वो बिक जाएगा आराम से. AI की मदद लेके पोस्टर वोस्टर बनाओ, वीडियो बनाओ, AI से पता नहीं क्या क्या लगता है यार, ठीक है ना. तो आप मुझे बताइए ज़रूर क्या आपको चाहिए. बट आई टेक अ क्विक शॉर्ट ब्रेक एंड अच्छा पूरा दुकान बेचना है उनको, ये कैसे करें. आई वॉन्ट टू सेल माई शॉप, कैसे करूँ, पूरी की पूरी दुकान बेचनी है इनको, ये तो भाई मैं ये एक काम करता हूँ ना, मैं भी AI से पूछता हूँ कि कैसे दुकान बेचते हैं क्योंकि मुझे भी आइडिया नहीं है कि दुकान कैसे बेचते हैं, ठीक है ना. बट हाँ AI को पता होगा, या तो फिर अगर हमारे सुनने वाले हैं जिनमें से जिनको अगर पता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है इनकी, ठीक है ना, तो अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान किसी को खरीदनी हो तो बता दीजिएगा. यहाँ पर हमारे पास एक मैसेज आया जिनको अपनी पूरी दुकान बेचनी है, वरना मैं AI से पूछूंगा. मैंने सोचा मैं प्रणव को पकड़ के लेके आता हूँ, ये हमारा जेंजी बच्चा है, ठीक है ना. तो ये जेंजी लोग जो है आधा काम अपना जो है मम्मी पापा से करवाते हैं और बाकी आधा AI से करवाते हैं, खुद कुछ नहीं करते हैं, ठीक है. तो प्रणव सबसे पहले ये बताओ कि AI
1: राइट,
0: ठीक है, I'm sure that you see so many people around you using AI. Absolutely. In various ways and sometimes you feel like wow that's so amazing and sometimes you feel like bhai mat kar tu AI, the AI should be banned for you.
1: Yes.
0: Where do you fall in the usage of AI? How much AI do you use and what all in what all things do you use AI?
1: I think in the creative industry AI has certainly made a bunch of minds and a lot of the skill sets redundant or lazy. And that is one of the biggest issues that we face in terms of processing, in terms of having that freedom and communication. AI certainly has, you know, been a drawback in that department. But from a personal experience, and you said Gen Z, so Gen Z jaise hum hain, harkatein bhi usi tarah ke hote hain.
0: Bilkul.
1: So I've used Gen Z responsibly and a bit irresponsibly as well. I'll start with the latter part. I wanted to do an experiment, right? I tried using AI for a dating app.
0: Okay.
1: Right. I tried using it for an AI. I used AI for a dating app experience. And trust me.
0: So you created a dating app?
1: No, I created a profile with the help and the experiences of AI.
0: Okay.
1: Right? So you try and see what are some of the best prompts or some of the best style of photos that can get the most likes or the most swipes. What are the details that you provide? What are the lines that get the most, eye catches? Whatever it is that is interesting, right? And I can tell you for sure. And then I'd also created a profile which by my own experiences, the way I talk, the way I feel, more simpler, a little more organic.
0: Fair.
1: Even to AI, you can feed in your own sort of senses, your own taste, whatever. Now, my personal experience, AI let me down.
0: Okay.
1: AI did not live up to the expectations.
0: Oh.
1: Yes.
0: But thank you.
1: Compared to the natural profile, and I think the natural profile worked a lot better compared to AI. And I just think that a lot of people
0: When you say it didn't work or didn't live up to your expectations, matlab kya hua? You didn't get the number of swipes, the right swipes that you were expecting?
1: Well, that's the parameter for whether it's worked or not.
0: Okay, so AI, so how many versus how many? As in like, tumhara natural profile pe tumhe kitne right swipes aaye the aur AI ke through kitne aaye?
1: Well, instead of numbers, let me just say that it was 3x better when you do it normally.
0: Achha, theek hai, done. Fair.
1: Yani 2x, 3x.
0: Fair. Yani ki agar tumhe AI ke through 100 aaye the, to natural mein tumhe 200 aaye the. I mean, you know, inflated numbers.
1: 100 are absolutely imaginary, especially for men on dating apps.
0: Chalo, let me be very honest about that. Done. Toh fir tumhe one right swipe AI ke through aaya tha aur normally mein 2 aaye the.
1: Let's put it that way.
0: Okay, theek hai. Chalo, ease of calculation.
1: Ease of calculation.
0: Ease of calculation. So, where did AI go wrong in your analysis then?
1: I think AI in a sense supports everyone with the similar or same answers. Regardless of, you could say that, I love sport, I love music, I love whatever. I think generic. It has a set template.
0: Right.
1: And then you have to be extremely specific and absolutely, you know, ChatGPT or Claude, jo bhi aap use karte ho, Gemini, you have to sit down and you have to completely open yourself up. In order for it to tailor make it to you. And uske baad bhi, there's no success rate. Because then AI is thinking to your words.
0: Right.
1: It's talking your tune. Then it doesn't have a track of, okay, what are the matches? What are the prompts that, you know, statistically worked a lot more? Kyunki in cheezon ka bhi surveys hote hain. Wherein people from different parts of the world say, hey, this is a generic prompt. This is something that worked for me. And that's, I think, somewhere AI, as much as you want to try and tune it to your language and to your words, it loses certain grip. It loses statistics.
0: 100%. I mean, see, it is a large language model. Okay, agreed. But it may not have the EQ of the humans.
1: Correct.
0: Na, jo emotional quotient hota hai, wo hamesha missing hota hai. Intelligence quotient hoga. Shayad wo aapse zyada hoga. Aapse bahut zyada hoga. Theek hai, but EQ jo hai missing hai, and that's what makes us humans so unique. Ke EQ aur IQ ka jo right combination hai, wo hum put forth kar sakte hai. And that's why, even when you read some emails or some scripts that are written by a ChatGPT or a Claude, you can see it and say it. Ke boss, ye insaan ne nahi likha hai. This is not human. ठीक है ना? So ये चीजें जो होती है ना, ये थोड़ा सा कहीं पर ऐसा लगता है कि you know, ये शायद टाइम लगेगा AI को, but slowly and steadily as you give time to AI, it does tend to become closer. I wouldn't say just as you are, but probably can almost come very close to the real you in some way if you train it the right way.
1: But you know, I have a different or a rather differing point on that, Neil. You're right when you say it can come closer, it can get better, but my thought is I don't think it should. Even on these apps, when you start talking to people or when you compliment your own friends or your own, you know, family members, or sometimes it could be someone you met at an event and you just want to, you know, compliment their work or whatever it is, or chaya plelo, you want to, you know, speak well with someone. a lot of the times they said they sometimes they might be joking, sometimes in a serious way they might just say, oh, haha, did you chat GPT this line?
0: Right, huh?
1: People are already starting to think this
0: true.
1: Way. But aap jitne bhi normal ya fir aap koshish karte ho to you know, keep words generic or organic, at the back of their mind, people are thinking a good compliment or a perfect line has already been used by AI.
0: Which I think...
1: We're sending people backwards.
0: It's not wrong, or it's not wrong to use AI for, even if it's for a compliment, even if it's for a message.
1: Right.
0: And I believe so, because sometimes you might fail to express what you really want to say. ठीक है ना, आपको दो लाइन में अगर कुछ लिखना है और उसके लिए अगर आपने दिमाग में आपके पांच लाइनें चल रही हैं, and you want to make it concise, there's nothing wrong in asking help from AI. ठीक है, आपने चैट जीपीटी से पूछ लिया, and the ones who actually look down upon it saying कि अरे अच्छा चैट जीपीटी, हाँ, I am like, dude, अगर use किया चैट जीपीटी तो क्या गलत है? You finally you've got a good product, finally you've got a good compliment in your case, like you're complimenting them, then it's a good compliment, receive it, be gracious about that.
1: अगर मैं वही message या फिर वही तरीके का compliment, if they're not able to carry out naturally, person to person, then it almost feels like, yikes, there's a big gap over here.
0: That's
1: a conversation
0: right.
1: gap, tonality gap, a formality gap, you know, all these sorts of things makes, you know, a good texter wouldn't necessarily be someone who's good in conversations
0: which is a true,
1: in person.
0: Which is a right? fact invariably.
1: And AI is going to create that divide further and further is my concern. Especially amongst the Gen Zs. Because we don't use words. Use bhi nahi karte.
0: Haan, tumko to
1: text is TXT.
0: Haan, exactly. Tumko
1: we say even for IDK. Using new IDK, LOL, IDK. GL. Good night, GN.
0: Nahi, GN nahi, GL.
1: GL?
0: Get lost.
1: Oh my god. you know, instead of saying honestly, do you know what we use? NGL.
0: Not gonna lie. Yeah.
1: Why don't you just say honestly? Yeah. What's wrong with that?
0: Exactly. Now, see, I understand where, you know, where it's all going. I mean, see, language, you know, it's a cycle.
1: Mm-hmm.
0: If you actually go to the basics of language, like way back, take a look at the old caves or the Egyptian, you know, what do you say?
1: The scripts.
0: The Egyptian scripts. Yeah. The you know, वहाँ सब में क्या था? वहाँ पे लंबे लंबे words नहीं लिखे जाते. There were signs and symbols.
1: Yeah.
0: That would designate things. That would, you know, mention things in very tiny little signs. Right. We humans are going back to that era. We are using emojis.
1: Yeah.
0: We are using NGLs and we are using IDKs. What is it? It is nothing else but signs that some human will understand at this point in time. That is exactly what used to happen back in the days. Mm-hmm. That we put a triangle or uske beech mein aisa goal dal diya to samajh mein aayega chahiye triangle uske beech mein goal kya hai, right? On the roads when you're driving, those signs are still prevalent, right?
1: Yeah.
0: Ek triangle hai, iska matlab kya hai? Give way. ठीक है, when you're driving, एक ट्राइंगल है उसके बीच में एक स्पीड बम्प है, तुम्हें पता है कि स्पीड बम्प है, एक सर्कल के ऊपर एक रेड मार्क मारा हुआ है, बीच में पी लिखा हुआ है, मतलब नो पार्किंग. ठीक है ना, दीज आर साइंस एंड सिंबल्स. सो वी ह्यूमंस हैव ऑलवेज लव्ड दीज साइंस एंड सिंबल्स. लैंग्वेज हैज मेड इट इलैबोरेट.
1: राइट,
0: लैंग्वेज ने सब चीज को इलैबोरेट कर दिया कि तुम हर चीज को डिस्क्राइब करो. एंड देन देयर वर ऑथर्स एंड पोएट्स हु मेड लैंग्वेज ब्यूटीफुल, यूसेज ऑफ वर्ड्स ब्यूटीफुल एंड गॉर्जियस, एंड वी फेल लव इन इट.
1: राइट,
0: फेल इन लव विद इट. नाउ we are going back to the caveman. We are trying to be the same old guy jo ek sign se bolta tha, ye aisa angoota dikha diya,
1: very good,
0: thumbs up, hai ki nahi? But kitna hum chat gpt use karte hain, kitna hum ye sab use karte hain, we'll obviously keep talking more about it. And your thoughts on how much of AI do you use and what do you use it for? 0586861003, that's my number. Send your thoughts. Aap kis cheez ke liye use karte ho? Pranav ki tarah dating apps pe apna profile banane ke liye use karte ho ya aur koi cheez ke liye use karte ho? Hame bataiye on 0586861003. I'm Neil Oja, with me is Pranav Prasanna. TSB, Talk Sport
2: and Business, Talk 100.3. For over 15 years, I have stood by the UAE with insurancemarket.ae. Now I may sound a little fresher, but I am still the same Alfred you love. Insurancemarket.ae.
3: Markets don't sleep. So why should you? Introducing Trade 24/7, the modern way to trade global markets anytime, anywhere. From precious metals and commodities to global indices, all in one powerful platform. With instant deposits and withdrawals, your money moves as fast as you do, backed by Acuity-powered signals. So you're always one step ahead of the market. Trade 24/7. Trade smarter, trade better.
4: This is Talk 100.3. TSB. Business advice, tips and resources. Talk 100.3.
5: I'm Maura Fogarty with your business update. The U.S. has announced new tariffs of between 10 and 12.5% on dozens of countries following an investigation into forced labor practices. It's the first significant effort by the White House to resurrect levies ever since the U.S. Supreme Court ruled that Mr. Trump's so-called Liberation Day tariffs were unlawful. China, the EU, India, Japan, and the UK are among the major economies targeted by the proposal. The U.S. says it'll impose these new tariffs on 60 countries for not doing enough to prevent the import of goods using forced labor. Well, President Trump has also signed an executive order asking AI developers to voluntarily submit their most capable models for government cybersecurity tests before releasing them to the public. It comes as there's increased security fears in Washington over powerful new AI systems. U.S. agencies would get up to 30 days to test the models before they're released to organizations outside the government. Our North America technology correspondent Lily Jamali reports that this move signals Mr. Trump is shifting his strategy on AI.
6: The signing of this executive order signals that this administration is willing to regulate AI. It's a very different positioning than they had on this issue just a couple of months ago when they were even trying to stop U.S. states from regulating the industry.
5: And a recent report from UKG, a human resources technology firm, shows that a quarter of employees surveyed said they're likely to miss work by coming in late, leaving early, or skipping work altogether because of the World Cup. 22% say they will still come into work even if they're tired and exhausted. And nearly a third of the respondents said they'll take at least one day off to watch the football matches. That's your business update.
4: TSB, talking sports, business, and more. Talk 100.3.
7: Bro, imagine you book your dream home and then drive away in a brand new Jador T2.
8: Yeah, right. I wish.
7: I'm serious. Book at Symbolic Zen Residences Alforjan before 30th of June and boom, the Jador T2 is yours.
8: And the apartments?
7: Fully furnished with panoramic balconies, smart automation and modern closed kitchens.
8: I'm going now.
7: Visit Symbolic Experience Center on Sheikh Zayed Road or call 800-5300 now.
9: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
4: This is Talk 100.3. This is Fan Network News from the BBC.
10: BBC News with Moira Alderson. Kuwait says at least one person has been killed and at least 63 injured after Iranian drones struck a terminal building at its international airport. Iran's Revolutionary Guards said they carried out the attack, which comes as renewed skirmishes between US and Iranian forces test a shaky ceasefire. Six people are reported to have been killed in Israeli strikes on the city of Tyre in southern Lebanon. The Israeli military said sirens had sounded in northern Israel because of what it described as infiltration by hostile aircraft. Ukraine says it's hit a Russian warship in a port near St. Petersburg as part of a wave of drone attacks targeting the area. It says the strike caused a large fire. At least 21 people have been killed and several others injured in a fire at a multi-story building in Delhi. The property accommodated patients and relatives of those receiving treatment at a nearby private hospital. The US Trade Representative's office has proposed imposing additional import duties on 60 economies for alleged failures to act against forced labour. The suggested tariffs are aimed at trading partners, including China, the European Union and the UK. The EU dismissed the claims as utterly absurd. A one-day general strike over labour reforms in Portugal has caused widespread disruption to public services, including transport, hospitals and schools. Hundreds of flights and trains have also been cancelled. A study suggests people in Britain will spend an average of 4 years and 8 months of their lives using their mobile phones without a clear purpose. That's the latest BBC News.
4: Fan Network News from the BBC. Talk music. Brought to you by insurancemarket.ae.
11: Mene

0: जब वो ऐसा कहेगी ना तो मैं जवाब क्या दूंगा?
1: जवाब? अरे बांगड़ू, प्यार में जवाब अपने आप सूझ जाता है। कहना अनुराधा।
2: अरे गुरु गुरु गुरु, अनुराधा नहीं, बिंदु बिंदु।
3: अरे तेरी की भूला।
1: कहना कहना
0: क्या?

0: आपने बहुत अच्छा शॉट दिया।
1: थैंक यू। मेरे लिए तो ये सब एक ख्वाब जैसा है।
0: ख्वाब तो ख्वाब होते हैं, पर ये